आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। रिश्तों के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई, अपनापन और विश्वास हर दौर में दिलों को जोड़ने का काम करता रहता है।

जब मन में शांति हो तो हर सुबह एक गीत बन जाती है। आज की भोर को प्रेम, सौहार्द और उम्मीदों के सुरों से सजाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
1: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables,

0: oil seeds, food grains, and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment, and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than one dozen people are injured and admitted to different hospitals. 10 people died in Mirzapur, 9 in Fatehpur, while 5 people died in Badayun and 4 people died in Bareilly district. The government has given 1-year extension to Director of Central Bureau of Investigation or CBI, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, the Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond the 24th of this month. U.S. President Donald Trump arrived in Beijing last evening for a 2-day summit with Chinese President Xi Jinping. Iran war, global energy crisis, trade tensions, Taiwan, and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. The summit comes at a pivotal moment for global geopolitics. While expectations for major breakthroughs remain limited, the meeting is being viewed as a critical effort to stabilize relations between the world's two countries amid rising international uncertainty. In IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. Today, Punjab Kings will face Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: अब आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 7:10 हुए हैं। एक वक्फे के बाद समाध करें पयाम सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे? अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
4: ओ
3: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
4: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
3: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
4: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं।

0: देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में। 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जम्मू एंड कश्मीर।

0: सभी ने आपको बताना चाहेंगे कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.8 मीटर पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी सुन सकते हैं। ये लाइव ट्रांसमिशन है पयाम सुबह जो 7:10 से शुरू होकर 11:30 बजे तक हम आपके साथ लाइव रहेंगे और इस ट्रांसमिशन में बहुत कुछ आपके लिए हैं, उससे की बातें, मुलाकातें। और आज का जो थीम है वो हम आज के दिन हम लेडीज़ के हवाले से बात करते हैं, लेडीज़ एम्पावरमेंट के हवाले से, अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिफत और मेरे साथ हैं फुरकान मजीद।
1: रिफत जी, मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। घर से सब निकलते हैं
0: जी जी,
1: आज आप ट्रांसमिशन के लिए निकली स्टूडियो के लिए, रास्ते में जब आप आ रही थी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई, रास्ते तो बिल्कुल खुले थे। खासतौर पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक तो कहीं नजर नहीं आ रहा था ज्यादा, खुले रास्ते और सुबह की ठंडी ठेरी हवा जो इंसान के दिल को मुअत्तर, दिमाग को मुअत्तर करती है। हाँ, जरूर ये बात है कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप, हम ये समझते हैं कि हम सुबह मॉर्निंग में निकले, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस हम सड़क पे जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि हम तेज रफ्तार गाड़ी चलाएं ये सोच करके रास्ते पे सिर्फ हम चल रहे हैं। लोग, ये जो कश्मीर में आजकल ट्रेंड भी है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते लोग निकलते हैं, बिल्कुल कुछ दौड़ रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, तो आपको इल्म नहीं होता है कि किस गली से, किस कूचे से कौन सा बंदा निकले, इसलिए आपको ख्याल रखना पड़ता है। तेज रफ्तार गाड़ी

0: चलाने से दिक्कत हो सकती
1: हमारे
0: है।
1: यहाँ ये जो ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है ना कि खुली सड़क मिली तो चलिए जो कुछ मर्जी है वो कर लें,
0: जी जी
1: और खास तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं बाइक्स लेकर स्कूटीज लेकर वो रोड पे आ जाते हैं, खुली सड़क मिली और शुरू।
0: शुरू हो गए बिल्कुल। तो फुरकान, इस हवाले से मैं एक वाक्य भी आपको आपके साथ अपने सामीन के साथ शेयर करना चाहूंगी। बाकी यह है कि जब हमें फुर्सत के लम्हात मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, और हम लोगों को कहते रहते हैं कि आप इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार मौसम है, बाहर का मौसम है, तो पिकनिक के लिए जाना चाहिए। तो कुछ दिन पहले मेरा भी एक प्लान बना तो मैं गई अपनी फैमिली के साथ। तो लेकिन रास्ते में जब हम चल रहे थे, हमारी गाड़ी से आगे एक गाड़ी थी तो उसमें भी फैमिली थी, बच्चे थे, शायद उन जनाब की बीवी थी, माँ थी, दो तीन बच्चे थे, छोटी छोटी लड़कियां भी थी। तो यूं ही हम थोड़ा आगे चले तो वो हमसे पीछे हो गए। तो अब शायद उन जनाब को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो हमसे आगे चले गए। लेकिन जूं ही हम आगे निकल जाते थे तो मतलब अननेसेसरली उसी वह ज्यादा स्पीड बढ़ा। मैं बाशो थोड़ा बहुत क्या था, नहीं ये कुछ हमें प्रॉब्लम है कि इसी के ब्रोट बात, या तो हमारे जहन में ये होता है कि सबसे पहले उस स्पॉट पे हम पहुंचे, हमें पहुंचना है, जबकि ये ख्याल ही गलत है कि आपसे पहले भी लोग हैं, आपसे पहले लोग आए हैं, है ना। तो ये थोड़ा रखना चाहिए। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने उसको बोला कि भाई आराम से गाड़ी चलाएं, लेकिन पता नहीं क्यों जनाब को ज्यादा पेन लगी तो ज्यादा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने लगी, और एक मोड़ पे ऐसे जब उन्होंने टर्न किया तो वहां से बाइक स्कूटी पे दो लड़के आ रहे थे, टीनेजर लड़के, तो इतनी तेज रफ्तारी से वो भी आ रहे थे और ये बंदा भी यहां से जा रहा था, तो स्कूटी को पीछे से ठोक दिया इन्होंने और दोनों लड़के गिर गए। एक लड़का मुझे लगता है कम से कम 5 सेकंड तक घिसता रहा सड़क पे, सारे लोग जमा हो गए, पिकनिक की तो मजा ही सारा किरकिरा हो गया। उसके बच्चे थे, उनकी मुझे लगता है माँ थी शायद उनकी, तो वो ख्याल भी नहीं, एहसास भी नहीं। अब ये देखिए हमाकत की बात ये है कि पहले उन्होंने उनको ठोक दिया, फिर चले गए सीधे, फिर पुलिस आई, फिर कहीं पर उनके सामने गाड़ी लगाई तो वो उनको रोका, फिर निकाला, फिर कौन सा पिकनिक और कैसा ये सारा मजा किरकिरा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हमें किसी की जान का ख्याल ही नहीं है, हम इतनी अपने अपनी धुन में मगन है कि हमें ये भी एहसास नहीं है कि इस हरकत से किसी की जान जा सकती है। या अगर आप निकले हैं तो आराम से निकलिए, थोड़ा दिल खोल के निकलिए, फुर्सत में निकलिए, फुर्सत की लम्हात ढूंढिए तब निकलिए, और जहन बना के निकलिए कि अगर आप जा रहे हैं, आपको आधा घंटा लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमने के लिए ही निकलते हैं।
1: कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर।
0: हाँ बिल्कुल।
1: आपने जब ये बात की कि कुछ लोग वहां जख्मी हुए और अक्सर जो है हमने देखा है कि इन ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं फैटल होते हैं।
0: जी जी।
1: मैं एक हैरान कुन डेटा अपने सामने के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का डेटा है, लोकल डेटा है,
0: जी जी,
1: जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, इसका डेटा है, पुलिस डिपार्टमेंट की जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है हमारा, उसके डेटा के मुताबिक जो साल 2024 है
0: जी,
1: इसमें जो टोटल जो किलिंग्स हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, जिन लोगों की जाने गई है, उनकी तैदाद है 831, यानी एक साल में 831 अफराद सिर्फ ट्रैफिक हादसा
0: की वजह से
1: वो बैठे। और इससे भी शदीद ये बात है कि जो लोग जख्मी हुए इन सड़क हादसा में उसका जो नंबर है परेशान कौन है, 7820 जिनको इंजुरीज हुई, जो जख्मी हुए। और अब अक्सर हमने देखा है कि ये जो इंजुरीज हो जाती हैं किसी पूरी जिंदगी के लिए,
0: कोई अपाहिज बन जाता है,
1: जिंदगी उसकी फिर मुतासर हो जाती है सिर्फ इस चीज को सोचने में कि मैं तेज क्यों गया, पूरी जिंदगी फिर इसी बात का रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये ना किया होता,
0: सही,
1: काश मैंने किसी की जिंदगी को खराब ना किया होता।
0: बिल्कुल।
1: देखिए जो कभी कभार क्या होता है कि कोई ड्राइवर गाड़ी फास्ट चला रहा होता है, ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, तो राह चलते किसी बंदे को वो ठोक देता है,
0: सही बात है,
1: नुकसान पहुंचा देता है।
0: बिल्कुल।
1: ये तो निकल जाता है लेकिन उसकी जो जिंदगी है,
0: अरे अजेरन बन जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने, और खास तौर पर फुरकान ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल टीनएजर बच्चे हैं, इनको वालिदैन ये तो दे देते हैं लेकिन शायद इनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं सिखाते हैं कि कहां पर आपको रुकना है, कहां पर आपको चलना है और कौन सी

0: जी हाँ सामिन, आप सुन रहे हैं पैम सुब की नशरियात। मैं हूँ आपके साथ फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं आज की इस नशरियात में रिफत आरा। रिफत जी, हम इस नगमे से पहले बात कर रहे थे
1: जी
0: कि जो बच्चे स्टंट्स करते हैं, एक सादा सा सवाल है जो हम सब के जहनों में अक्सर रहता है,
1: बिल्कुल
0: क्यों, वजह क्या है, क्यों ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये भी सवाल है कि हम वो चीज़ अपने बच्चों से क्यों करवाते हैं जो हम भी नहीं चाहते।
1: सही बात है।
0: तो आपसे जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक क्या लगता है, आपको ये हो क्यों रहा है?
1: देखिए, इसके लिए बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। या तो हम ऐसा करें कि हम ऐसा, मतलब हम अपने बच्चों को वो चीज़ ना दें जिससे उनकी मतलब उनकी वो जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। अगर वो किसी और चीज़ में अपनी सलाहियत को डालें, अपनी सलाहियत को किसी और चीज़ में ये करें, तो उनका वो अपना लोहा मनवा सकते हैं। हम उनको वो चीज़ दे रहे हैं जिसमें वो अपनी सलाहियत खो रहे हैं, और ऐसा क्यों है, क्या हमारे पास फुर्सत नहीं है? ये सवाल मुझे कहने से बेहतर है कि हम अपने सामने पर ही छोड़ देते हैं, वो इस बात पर सोचे क्या हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या हमारे पास फुर्सत नहीं है, या हम मसरूफ इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमें ये सोचने के लिए टाइम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर बच्चे को कोई चीज दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा, क्या ये भी फुर्सत नहीं है हमारे पास कि हम अपने बच्चे को कहें कि नहीं, ये चीज सही नहीं, ये चीज गलत है, इस तरह से आप करें, अगर हमने आपको कोई चीज दी है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारे सामने भी सोचें कि सही क्या है और गलत क्या है।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं सही और गलत की, और हम जब बात कर रहे हैं, अक्सर हमने माशरे में देखा है कि हम बात कर रहे होते हैं कि वालदैन की जिम्मेदारी है। देखिए, वालदैन में कौन आते हैं, माँ है और बाप है,
1: बिल्कुल
0: उनकी जिम्मेदारी यकीनन है। और अक्सर हमने देखा है कि अक्सर जो है, हम अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉइंटिंग फिंगर्स टूवर्ड्स सम पर्टिकुलर पर्सन, अ सिंगल पर्सन, अक्सर हमने देखा है कि माशरे में बाप कह रहा होता है कि ये जो है, अगर माँ ऐसा करती तो बच्चा मेरा खराब नहीं होता।
1: बिल्कुल, अगर गलत है तो तिलशुमाज खसान, अगर सही है तो शुशमाइलस पटासा।
0: ऐसा क्यों है? ये भी एक सोचने की बात है। और आज की ट्रांस में चूंकि हम खवातीन पर बात कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और इसमें भी एक ये बुनियादी सवाल उठता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट की, वुमन अपलिफ्टमेंट की,
1: जी जी,
0: तो शुरुआत तो घर से होती है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो जब घर से शुरुआत होती है तो एक इशारा तो ये भी है ना कि आपने शुरू कहां से करना है, तो अपलिफ्टमेंट कहां से होगी,
1: घर से होगी, बिल्कुल,
0: क्योंकि एक घर से ही फिर
1: माशरा बनता है। सही बात है, सही बात है।
0: तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कैसे हम एक औरत को बाइख्तियार बनाए।
1: औरत को बाइख्तियार बनाने का मतलब ये है कि उन्हें तालीम, इज्जत, फैसले करने का हक, माशी मौके और महफूज माहौल दिया जाए। फुरकान,

0: ताकि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
1: बिल्कुल सही।
0: देखिए, लड़कियों और औरतों को मयारी तालीम देना सबसे अहम कदम है। तालीम एतमाद, शोर और बेहतर मुस्तकबिल देती है, तो इसकी शुरुआत भी हमें घर से ही करनी है। पहले अपनी जो लड़कियां हैं, अपनी जो खवातीन हैं, लेडीज हैं, उनकी इज्जत करें, उन्हें तालीम दें, उनकी बात भी माने, उनकी बात को समझने की कोशिश करें।
1: देखिए, औरत सिर्फ एक फर्द नहीं है, ये भी हम समझते हैं ना,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि पूरे माशरे की बुनियाद है। हमें समझना है कि वो माँ भी है, वो बहन भी है, बेटी भी है, उस्ताद भी है,
0: बहुत सारे किरदार अदा करती है,
1: जिंदगी के हर मोड़ पर वो मोहब्बत, कुर्बानी और हौसले की अलामत भी है।
0: सही बात है।
1: तो इसलिए अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट शुरू अगर हम करें तो बेटी से करें, माँ से करें, बहन से करें,
0: क्या बात है जी,
1: या अपने शरीक हयात से करें।
0: बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि जो लड़कियां होती है ना फुरकान, वो घर की रौनक होती है।
1: बिल्कुल सही।
0: आप देखें, किसी घर में अगर आप तीन चार लड़कियां देखेंगे ना, तो वो घर बिल्कुल नूर से भरा हुआ लगता है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इनको खुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और अगर हम हुकूमती सतह पर देखें तो इनके लिए स्कीम्स भी बहुत सारी आती हैं, जिनके जरिए हम लेडीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, और हुनर भी सिखाया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे यूनिट्स खोले जाते हैं जहां पर हुनर सिखाया जाता है, लड़कियों को हुनर सीखने के साथ साथ उनकी माशी हालत को भी देखा जाता है, बेहतर की जाती है, उसके लिए भी काम हो रहा है। अगर हुकूमत हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशा है, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो हमें अपनी जो इंफरादी जिम्मेदारी है, पर्सनली हम भी तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, अपनी लड़कियों को, अपनी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए घर, मौशरे और काम की जगह पर औरतों की राय को अहमियत देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: बहुत अच्छी बात। और इसमें है ना, अगर हम तालीम दे रहे हैं तो उसके साथ इज्जत भी देनी है,
0: इज्जत देनी है,
1: उसके साथ हमें तहफ्फुज भी देना है,
0: बिल्कुल,
1: और हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है।
0: मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पहले आप औरत की इज्जत कीजिए।
1: बिल्कुल सही।
0: वो चाहे माँ है, चाहे बेटी है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को एक बहुत बड़ा मकाम दिया है। देखिए, मर्द की जो जन्नत है वो औरत के कदमों के नीचे है, वो हो गई माँ हमारी, वो भी तो औरत है, इसलिए उसकी इज्जत करना लाजिम है। जब आप औरत की इज्जत करने लगेंगे तभी वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि मर्द के बिना औरत चल नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही।
0: चलेगी तो दिक्कतें होंगी, मुश्किलें होंगी, अगर आप उनका साथ देते हैं, उनको आगे चलने का रास्ता हमवार कर देते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और वो मंजिल पा सकती हैं जिनका उन्होंने ख्वाब देखा होता है, एक मकाम पा सकती है। और बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, जिन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया बल्कि कौमी और बैन अलाक़ौमी ऐसे एजाजात भी हासिल किए, और वहां पर भी अपना नाम रोशन, मुल्क को कौम का नाम रोशन किया।
1: बिल्कुल सही, दुरुस्त कहा आपने। और आज देखिए, आज की जो औरत है वो हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है।
0: बिल्कुल।
1: आप देखिए, चाहे वो तालीम हो, साइंस हो, खेल, सियासत हो, तिब हो, इवन आप देखेंगे सहाफत हो या कारोबार, ख्वातीन हर जगह अपना नुमाया रोल जो है वो अदा कर रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए फुरकान, अच्छी सेहत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी सेहत की सहूलियात, जहनी सुकून और महफूज माहौल औरत की तरक्की के लिए बुनियादी जरूरत है। अब देखिए, हमने बात की थी इसमें कि औरतों के लिए जो है हुकूमती इकदाम क्या है, कुछ स्कीम्स हैं जिनसे वो इस्तेफादा भी कर सकती हैं, जैसे मुद्रा योजना स्कीम है। अगर कोई लेडी, कोई खवातीन ऐसी है कि जो अपना कोई कारोबार, कोई छोटा सा यूनिट खोलना चाहती हैं, तो इस स्कीम से वो इस्तेफादा कर सकती हैं। इसमें फिर वो अपना कोई यूनिट डाल सकती हैं जिसमें और लेडीज को भी वो इन्वॉल्व करके उनके लिए भी रोजगार का वसीला पैदा कर सकती हैं।
1: बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर ही रही है, हमें भी आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ रुकते हैं, सामीन के लिए एक प्यारा सा नगमा क्यों करके रखा है, ये सुनते हैं
0: जी।

0: 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: मरकजी काबीना दिच अकत 17,500 करोड़ रुपये हंद खर्च जमीन हंद सतह नजदीक लबन इन वाजन कोल चन तो लिगनाइटस गैसस मज तब्दील करने कन प्रोजेक्टन वतबव दिन मुतलिक सकीम मंजूरी। अश्वनी वैष्णवन वोन सकीम च कोल चन तो लिगनाइटस गैसस मज तब्दील करने किस प्रोग्रामस तेजी सान ब्रो पकन बापत अक बोड़ कदम।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का

0: हर सरकारी योजना का हर पात्र व्यक्ति हर घर तक हर परिवार तक पहुंच सके ये सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक दायित्व उनका हमारा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं का लाभ इन गाँव में पा सके। कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज का कोई परिवार न छूटे इसकी कार्य योजना जिला प्रशासन ने बनाई है। हमारे सभी सीनियर अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों का भी रिव्यू करके इन्हें सिचुएट कराएंगे। लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी जिला प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ प्रारंभ की है।
1: यपरचे हतन दोहन पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस तहत द्रुस यूटी में सरगर्मी चिकचा अवसान जारी पेश अत सिलसिलस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद यह पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर खुराक तो ग्राहकन हंद मामलन हंद वजीर सतीश शर्मा ने रात श्रीनगर एक मीटिंग दौरान इन वाजन बज ईज तो मुहर्रम हराम के सिलसिलस में गजाई चीजन तो लाजमी खजमचन हज दस्तियाबी साम अत मौक पर आई जानकारी दिन जम्मू कश्मीर किन तमाम इलाकन में गजाई चीज LPG तो पेट्रोलियम मसनूआत वफिर स्टाकस में मौजूद। तमो दि हदायत जयाम मुतर बरकान दौरान गचे लुकन वफिर मकदारस मज गजाई चीज दस्तियाब थावन यिन पत वन मीडिया सित कत करान तिमो।
3: सफिशियंट स्टॉक है डिपोज पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आए। पहली बार हुआ कि डेढ़ महीना पौने दो महीना एडवांस में हमने मुहर्रम की तैयारियां और ईद उसकी तैयारियां भी हैं और मुझे लगता है कि एडवांस ही सब कुछ करना है। जियो पोलिटिकल हालात जो है वो आप भी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे।
1: कशरन खबरन हुंद ब्याखाक बुलेटिन सब दे आकाशवाणी श्रीनगर पर 9 बजे तो 1 मिनटन पर नशर अज दी इजाजत खुदा हाफिज।
4: समीन भाई आमिर सुबह की नशरियात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियो से मीडियम वेव 268.81 मीटर और इसके अलावा ये नशरियात आप सुन रहे हैं FM 103.5 MHz आकाशवाणी के लाइव मोबाइल ऐप और DTH पर भी। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और आज की इस नशियात में मेरे साथ हैं रिफत जी। रिफत जी, बयाम सुब तो जारी है
5: जी,
4: बयाम सुब में खास तो होता ही है लेकिन इसके अलावा भी हमारी ये जो नशियात चलती है पूरे दिन
5: जी जी,
4: इसमें खास बहुत कुछ होता है।
5: तो वो खास क्या है, शाम तक कितने प्रोग्राम्स चलेंगे वो उनकी पूरी डिटेल आप बताइए।
4: बिल्कुल, और मैं बता देता हूं और आप भी सुनिए और हमारे समीन भी सुनेंगे कि आज की नशियात में उनके लिए मजीद क्या क्या, क्या है। आया चलता है।

समीन प्रोग्राम सूफी सदा नशर होता है सुबह के 10 बजे। आज का प्रोग्राम सूफी शायर प्रकाश राम भट्ट से मुतालक है। तहरीर, आवाज और प्रोड्यूसर गुलाम रसूल आखून।

0: समीन सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार प्रभात समाप्त करेंगे। रिले का बस जरा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता।

0: और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा दार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग

0: 11 प्रतिशत तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में

0: 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया।

0: कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी हाँ सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2.3.5 MHz पर, और आप इस वक्त हमें DTH पर भी सुन सकते हैं, लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं और मीडियम 268.81 मीटर पर। सामीन, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज जो हमारा थीम रहता है वो लेडीज एम्पावरमेंट के बारे में हम बात करते हैं इस ट्रांसमिशन में। आज थर्सडे हैं और ठीक 10:30 बजे एक मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगी जिनके साथ हम बात करेंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आप भी सुनिएगा। और हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम में, लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम में, हमारा मकसद ये होता है कि वो लेडीज़ को हम मधु करें अपने स्टूडियो में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो मकाम हासिल किया होता है, वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, तो आप भी सुनिएगा, और क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: जी, पैगाम सब की नशरियात तो जारी है।
2: जी बिल्कुल,
3: हम मुख्तलिफ मौजूदात पर बात करते हैं, जैसे अभी आपने हमारे सामने इनको बताया कि खास मेहमान भी शामिल होती हैं इस प्रोग्राम में।
2: जी जी,
3: इस प्रोग्राम में तारीख का भी हवाला दिया जाता है।
2: सही कहा आपने,
3: आज चूंकि 14 मई है और हम अपने सामीन तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि आज के दिन भी पूरी दुनिया की तारीख में खास वाकयात भी हुए हैं।
2: जी जी,
3: तो उन पर एक मुख्तसर सी नजर डालते हैं।
2: बिल्कुल,
3: जैसे मैं अपने सामीन को बताना चाहता हूँ कि आज ही के रोज यानी 14 मई को सन 1610 में फ्रांस के किंग हेनरी 4 के कत्ल के बाद लोविस 13 को तख्त व ताज मिला था।
2: सही कहा आपने, और आज ही के दिन यानी 14 मई को 1702 ईस्वी में इंग्लैंड और हॉलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया था।
3: समीन, आज ही के रोज 1702 ईस्वी में सूडानी फौज ने वारसा पर कब्जा किया।
2: 1811 ईस्वी पेरागुए को स्पेन से आजादी मिली थी आज ही के दिन।
3: समीन, आज ही के रोज 1842 ईस्वी को दुनिया के पहले हफ्तावार अखबार द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज की इशात शुरू हुई थी।
2: आज ही के दिन 1878 ईस्वी में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वैसलीन को पहली बार रजिस्टर किया गया था।
3: और 1904 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार ओलंपिक खेलों का इनेकाद किया गया।
2: 1908 पहली बार चार्ल्स विलियम फुरनास ने हवाई जहाज से परवाज की थी आज ही के दिन।
3: 1940 में आज ही के रोज दूसरी आलमी जंग में नीदरलैंड ने जर्मनी के सामने खुद सुपुर्दगी की थी।
2: आज ही के दिन 1955 में

0: अमेरिका ने बहर अल काहिल में न्यूक्लियाई तजुर्बा भी किया था
1: जी। और आज ही के रोज यानी 1960 में एयर इंडिया के तैयारे ने न्यूयॉर्क जाने के लिए बहर अकियानूस पार किया था।
0: 1963 कुवैत अक्वामी मुतहिदा का
1: रुकन बना था। जी
0: जी जी 111वां रुकन बना था वो।
1: बिल्कुल 111वां रुकन बना था। समीन कुछ और भी मालूमात आज के वाकयात के हवाले से आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये नगमा सुन लेते हैं। क्या?

0: काम हो या रोजमर्रा का कोई भी काम हो,
1: जी जी जी,
0: तो हम परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या ये परफेक्शन ढूंढना सही है?
1: नहीं, सही तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई परफेक्ट है ही नहीं।
0: दुरुस्त। अब अपने सामीन को ये बताना चाहेंगे कि जब तक आप नगमा सुन लेते हैं, सोचिए जरा कि परफेक्शन ढूंढना कितना जरूरी है।

0: रिफा जी, समी तो नगमा सुन रहे हैं
1: जी जी।
0: एक लाइन जो अभी अभी इस गाने में चल रही है कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जिंदगी की हकीकत यही है।
1: बिल्कुल यही है, कुछ खोकर पाना और कुछ पाकर खोना। जिंदगी चलती है, रवा दवा है। अगर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर रुक जाएं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।
0: आपने जबरदस्त बात कही। मैं आपको इस वक्त मुझे याद आ रहा है कुछ, जैसे आज हमने तारीख के हवाले से बात की, 14 मई का आज का दिन है।
1: जी जी।
0: देखिये 14 मई जो है, अगर हम एग्जैक्टली बात नंबर्स की बात करते हैं, तो आज 134वां दिन है।
1: जी जी।
0: ठीक है, 231वां आज जो अभी जो दिन आने वाले हैं वो हैं, ठीक है, वो नंबर है। और आज 20वां हफ्ता चल रहा है, यानी कुल मिलाकर बात करते हैं ना, तो साल 2026 जो है 36.44% अब तक गुजर चुका है।
1: बिल्कुल,
0: आज के दिन तक।
1: सही बात।
0: लेकिन अहम बात मालूम है आपको क्या है? वो ये है कि ये जो साल है, या इस तरह से कई साल जो आएंगे या जो गुजर गए, कोई भी साल अपने आप में परफेक्ट नहीं था।
1: क्या बात है, तो इंसान कहां से परफेक्ट होगा?
0: इंसान कहां से परफेक्ट? जैसे जब हम साल के जो नंबर्स देखते हैं, हम देख रहे हैं कि हर साल 99.73% जो है वो मुकम्मल होता है।
1: क्या बात है, मतलब 100% नहीं होता है।
0: 100% नहीं, 31 दिसंबर जैसे हम कहते हैं कि साल का आखिरी दिन है, वो आखिरी दिन अपने आप में मुकम्मल नहीं है।
1: बिल्कुल, उस दिन भी हमें शिकायत रहती है ना, बहुत सारी चीजें हमने की थी, रेजोल्यूशंस रखे थे जो कंप्लीट नहीं हुए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसका मतलब ये है कि परफेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट,
0: है ना? परफेक्शन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिंदगी क्या है, सुन लीजिए आगे इस नगमे में खूबसूरती के साथ।

समीम संतोष आनंद के लिखे बोल आपने सुन लिए हैं। पयाम सुबह जारी है, यहां रुकते हैं उर्दू खबरों के लिए। आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज। रिले का बस जरा सा इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हिमंत

0: तबिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतेकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक्किद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकानी असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्तिताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकामात जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिजा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात खपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को खत्म कर दिया है जिनका सबुकतोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने जरई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। जरई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। जिला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि जरई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर जरूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से जरई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतेकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अबू जहबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वजीर आजम का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तावुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुत्तहिद अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह व बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिद अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिद अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में

0: भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमूई मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक अज़्म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
2: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद जिलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिली, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोजा मुजाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुजाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आजम के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहिदे पर मबनी है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तावुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तावुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे

0: बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी छह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है, CBSE की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। CBI के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी IPL सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये छा आकाशवाणी श्रीनगर समीर मोहतरम पेश खदम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामीन, सेहतस मुतलिक प्रोग्राम हेच तिंदिस खदमत मज हाजिर। ये प्रोग्राम तह तम वातनानस मज सावन करान कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, लाल नगर छानपुरा श्रीनगर। समीन आज स्टूडियोस मज तशरीफ फरमा डॉक्टर नजीर अहमद खान सब, यम जन सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑनकोलॉजी तो यमन इस कैंसर बेमार मुतलिक कथ करान, कैंसर बेमार कथ कन वतलान, क्या आसान ये कैंसर, यमन चीजन यमन कथन फुट काड़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: डॉक्टर साहब अस वन तो ये कैंसर ये कर तो थोड़ा सा डिफाइन, तिकेज ये कैंसर छ सो बेमार यो जन एकस इंसानस छन अक्सर पाई लगान के पतही छन तेमस आसान, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस ते थोड़ा सा ये सोचन के वल ये छ लकड़ का बेमार एमिस तूत पता आसान के तशखीस छन गसान वक्तस पेटन के यो ताई स्टेज 2-3, 3-4 कुन आसान पोकमुत, तो अम सतिस बेमारस पत वापस फेरन गसान मुश्किल, अत कर तो थोड़ा सा वजाहत ये कैंसर गो क्या पता कित कन लगे।
4: सही तुहद सवाल सही फरमान, बेसिकली बन तो कि मतलब कैंसर क्या है। कैंसर बेमार कह बल्कि यह मुख्तलिफ मतलब तकरीबन दोन हतन बेमार अकोई नाव दुत कैंसर, तो यह कैंसर क्या है गसान यह जन खौफनाक बेमार मान तो बन तो अत मुतलिक यानी कि इत जन कह चीज अगर वो कुन तय कंस्ट्रक्शन वो कड़ वो या कह चीज वो मुख्तलिफ चीजों सत्य बनोमुत इथे कन सोन जिसम यह बनोमुत सेलो सन जन नॉर्मल सेल्स ट्रिलियनज ऑफ सेल्स सास लच या मतलब बिलियन कह बल्कि ट्रिलियनज ऑफ सेल्स सन सोन जिसम बनोम प्रेथ कुन सेल पन पन कम मतलब जन अकम कह सेल जन खास कस्म फंक्शन करान तमो सर्गन बनान मतलब इस जन ऑर्गन मतलब मनो कि शिशनोर डाइजेस्टिव सिस्टम या कोलोरेक्टल सिस्टम जन सिस्टम اکہ قسمچہ سیلہ یمن زن یہ سپرد کرنا آمت تو نارملی کیا نارملی سیلہ پن کام ہین کر پن لائف سپین آسان مطلب کن کی گھنٹس آسان کی منتھس آسان کن ایئر آسان ام پتہ یہ سیلز مران تو یہ سوری سسٹم اس زن باڈی ہند پکان یہ باضابطے اخ ڈسپلنس تحت پکان اخ نظم ضبطس تحت پکان تو اتھے کن ات مز سسٹم

0: के सरकारी दौरे बीजिंग पहुंच गए। ईरान जंग के मामले पर तवील बातचीत का प्रोग्राम।
1: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दयालगाम अनंतनाग में चोरी का मामला हल, पुलिस चोरी शुदा लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप बरामद।
0: नौगाम रेलवे रोड पर कचरे के ढेर, कूड़ा करकट और गंदगी की वजह से आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा।
1: ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को हर तरह की सहूलियात बहम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
0: बारामूला में लेबर स्कॉलरशिप फंड रोकने पर वालिदैन का सरापा एहतजाज।
1: हर सरहदी गांवों की खुशहाली और कौमी दायरे से जुड़ना हुकूमत का मिशन। एलजी मनोज सिन्हा ने कुपवारा में मुतअद्दद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया।
0: नशे से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम, कुलगाम में 18 लाख रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागुजार।
1: जम्मू कश्मीर में PMJAY सेहत स्कीम के तहत कैशलेस तिब्बी सहूलियात में बड़ी पेशरफ्त।
0: जम्मू कश्मीर में शरह पैदाइश में कमी, हमल के दौरान जीनियाती टेस्टिंग की अहमियत में इजाफा।
1: जम्मू कश्मीर में डिजिटलाइजेशन में अहम पेशरफ्त, 93.39% रेवेन्यू रिकॉर्ड का इंदराज, 66 लाख से ज्यादा खसरा नंबरात की मंजूरी, 3,04,549 केस तैयारी की सतह पर शोपियां नंबर 1, 1 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड साजों के पास और 38,138 मामला तस्दीक के मरहले पर।
0: जोजिला टनल तकमील के करीब 210 मीटर की खुदाई का काम बाकी, साल भर ट्रैफिक और 3 घंटे का सफर अब सिर्फ 15 मिनट का होगा।
1: समीन, ये थी मकामी अखबार से ली गई आज की सुर्खियां, हमें इजाजत दीजिए।

0: शर्मा ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान आने वाली ईद उल अजहा और मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में गिजाए अजनास और लाजमी खिदमात की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि अयाम मुतबरके के दौरान लोगों को वाफिर मकदार में गिजाए अजनास दस्तियाब रखी जानी चाहिए। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: सफिशियंट स्टॉक है, डिपोज पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आए। पहली बार हुआ कि डेढ़ महीना पौने दो महीना एडवांस में हमने मुहर्रम की तैयारियां और ईद उसकी तैयारियां भी हैं, और मुझे लगता है कि एडवांस ही सब कुछ करना है। जियो पोलिटिकल हालात जो है वो आप ही नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जंग बहुत बड़े मुल्कों में लगी हुई है, उसका असर तो ऑब्वियसली आजकल एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज हम पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें पूरी तैयारी करनी है और हर चीज के लिए तैयार रहे।
0: खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कल पुराने श्रीनगर शहर में 17 मई को मुनक्कद होने वाली खैबर रन फॉर शहर खास 2026 के लिए जर्सी की नकाब कुशाई की इस दौड़ का अहतमाम फ्यूकन स्पोर्ट्स और KSW के इश्तराक से किया जा रहा है। इस दौड़ में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 150 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसुफ ने शहर खास में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने के लिए मुंतजमीन की तारीफ की। दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय न पेशा खदमत है शब खबर की पेशकश, शहर शहर मंजर।
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश, शहर शहर मंजर।
4: आदाब। अवामी शिकायात और मुतालबात पर मबनी प्रोग्राम शहर शहर मंजर का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। सामीन, आइए प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं अवामी मसाइल पर मबनी मौसूल हुई कुछ फोन कॉल्स।
5: ٹریکٹر والوں نہ پرسنل تمہ کھاتن نا کھانا تھان جمع بورڈر وورڈر

0: हुई हैं, किस जिंदगी के किस स्टेज पे, यानी उम्र के किस स्टेज पे ये ज्यादा असरअंदाज हो जाता है। सबसे बेस्ट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो 10-11 साल तक हो जाती है। जरूरी यह है कि हम उन बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में हो उन पे एम्फेसिस दे दें इन चीजों की, क्योंकि जब उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी और वो बिल्कुल सेंसिटाइज हो जाएंगे कि पानी की किल्लत जो हो रही है उसको हम कैसे रोक सकेंगे। एक तो वहां पे प्राइमरी स्कूल्स में मैं कहूंगा कि इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और उनको प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए कि पानी की किल्लत कैसे हो सकती है मुस्तकबिल में। तो दूसरा, फिर बाद में स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम यूथ है जिनको इस चीज की जरूरत है कि वो सेंसिटाइज हो जाएं, उनको ये एहसास बन जाए, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। हम इनको तालीमी इदारों तक बहुत ज्यादा कन्वेंसिंग करें, काउंसलिंग करें बच्चों को, ताकि पानी की किल्लत ना हो जाए और पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही तरतीब से हो जाए, ताकि आइंदा की जनरेशन इस चीज की फराहमी में वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साउथ एशिया जो है ये बहुत ही इन्फ्लुएंस है रिलीजन से, चाहे आप कोई भी रिलीजन ले लें, जो ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे हमें बहुत इन्फ्लुएंस है, मजहब का दखल है हमारी जिंदगी में। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर ये जो मजहबी रहनुमा भी हैं वो भी अपनी अपनी तकारीर में, जो अमूमन अपनी अपनी जगह पे चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, जो वहां पे वो अपनी तकारीर में इस पानी के इस्तेमाल का अच्छी तरह से समझाएं लोगों को कि किस तरीके से हम इसको बेदरेक इस्तेमाल से बचाएं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये पानी बच जाए।
1: सामईन, वादी के अवाम को आजकल एक और मसले का सामना है और वो है सफ़ेदों की रुई से एलर्जी और इन्फेक्शन का। इस मौसम में वादी के शहरगाम में रूसी सफ़ेदों से पोलन और रुई पैदा होते हैं, इससे आम लोगों में निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियां पैदा होती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और जवान, हर कोई इस सूरत हाल का शिकार हो रहा है। अगर तिब्बी माहरीन लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हैं, ताहम सरकार पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मसले का कोई पायदार और देरी न हल निकाला जाए। पेश है शहर शहर मंजर की ये डेस्क रिपोर्ट।
2: समीन, आज हम एक ऐसे मसले की जानिब तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो मौसम बहार में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रहा है। ये मसला रूसी सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई और पोलन का है, जो फिजा में फैल कर सेहत के मुतअद्दिद मसाइल पैदा कर रहे हैं। जैसे ही दर्जे हरारत में इजाफा होता है और बहार अपने उरूज पर पहुँचती है, रूसी सफेदे के हजारों दरख्त सफेद रुई नुमा ज़रात फिजा में छोड़ते हैं। पार्कें, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके इन उड़ते हुए जरात से भर जाते हैं। अगरचे ये मंजर बाज लोगों को खूबसूरत महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ये कई शहरियों के लिए एक मौसमी अजाब बन चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक ये पोलन और रुई एलर्जी, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, गले की खराबी और जल्दी बीमारियों का सबब बनते हैं। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और दमा या सांस की बीमारियों में मुबतला अफराद के लिए सूरतेहाल ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अस्पतालों और क्लिनिक्स में इन दिनों एलर्जी से मुतलिक मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। लोग मुसलसल छींके आने, खांसी, आंखों से पानी बहने और सांस की तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि गुज़श्ता चंद बरसों में ये मसला मजीद संगीन हो गया है, क्योंकि कई दहाइयां कबल सड़कों के किनारे, सरकारी दफातर और रिहायशी इलाकों में बड़ी तादाद में रूसी सफेदे के दर लगाए गए थे। माहरीन माहौलियात के मुताबिक अगरचे ये दरख्त तेजी से बढ़ने और लकड़ी फराहम करने के लिए लगाए गए थे, मगर अब इनके मुजिर असरात अवामी सेहत के लिए तशवीश का बाइस बन रहे हैं। एक और अहम मसला आग लगने के खतरात का है। खुश्क रुई नुमा ज़रात बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं और खुश्क मौसम में तेजी से आग फैलने का सबब बन सकते हैं। खास तौर पर जंगलात, बिजली के तनसीबात और कचरे के मकामात के करीब महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस भी इस दौरान एहतियाती हिदायत जारी करता रहता है। वालदेन खास तौर पर परेशान हैं, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे बाहर निकलते वक्त शदीद तकलीफ महसूस करते हैं। दुकानदार और रेडी फरोश भी शिकायत करते हैं कि ये उड़ते हुए ज़रात कारोबारी सरगर्मियों और सफाई के निजाम को मुतासिर करते हैं। अवाम अब हुकूमत और मुतलका इदारों से मुतालबा करते हैं कि इस मसले के लिए फौरी और तवील मुद्दती इकदाम किए जाएं। माहरीन तजवीज देते हैं कि रूसी सफेदे के दरख्तों को मरहलावार कम करके इनकी जगह मकामी और कम एलर्जी पैदा करने वाले दरख्त लगाए जाएं।

0: अलावा पोलैंड के मौसम से पहले साइंसी बुनियादों पर शाख तराश भी मुफीद साबित हो सकती है। माहरीन सेहत लोगों को मशवरा देते हैं कि वो बाहर निकलते वक्त मास्क और हिफाजती चश्मे इस्तेमाल करें, घरों की खिड़कियां बंद रखें और अगर एलर्जी की अलामत शदीद हो तो फौरी तिबी मशवरा हासिल करें। अवामी मकामात की सफाई और सड़कों पर पानी का छिड़काव भी फजाई जरात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। शहरियों का मानना है कि महकमे जंगलात, बल्दियाती इदारों, महकमे सेहत और माहरीन माहौलियात के दरमियान मरबूत हिकमत अमली वक्त की अहम जरूरत है। अवामी बेदारी मुहिमात भी लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में मदद दे सकती हैं। सरसब्जी और खूबसूरती अपनी जगह अहम है, लेकिन अवामी सेहत का तहफ्फुज़ इससे कई ज्यादा जरूरी है। माहौलियात के तहफ्फुज़ के साथ साथ इंसानी सेहत का ख्याल रखना भी वक्त का तकाजा है। शहर शहर मंजर के लिए मैं बसारत गुल।
1: प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स।
2: मैं ड्राइवर मोहम्मद शबीब बोल रहा हूँ गनस्तान जनाब। में रेडियो कश्मीर की बात मसल बना में जरिए शहर शहर मंजर अमे जरिए कायम जनाब। जनाब अरे रोड खंडर नगर रोड जनाब यह हार्डर सिंह पोत जनाब संभल यह जनाब 15 किलोमीटर यह खस्ता हाल जनाब। आज आज लग गवर्नमेंट वन 30 वरी जनाब यह रोड बढ़ाओ बढ़ाओ मगर बढ़ाओ ना जनाब कह खास कर दशल पोर गाम खस्ता हाल गुम जनाब। अत जनाब रोड पर वाले जाए खान थाव गाड़ी वन सैर दिन मौक कह जनाब। बहुत गवर्नमेंट कर गुजारिश रोड यह बढ़ा तो अस तल वस जनाब।
3: बीरो मोहम्मद अयूब पारे हस्पताल अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30 वरी गई कैसा कंजेशन कम दो तमिस कम जोर गुन अपडेट अच्छे डाक्टर अच्छा हफ्ते सद अच्छ डाक्टर तुम से कम पोडर सह बोड गाँव 12 साथ से ये आबादी अच्छे पे बेमार या मागम नदीर अवर हे गाड़ वो अच्छा फायदा आए तेल हस्पताल अच्छा मिशी नरी ना कि अच्छा डंटर डाक्टर दोस आसान बिचार कुर्सी पे तमिस हिसाब कहें तुम बीरू वाल तक वापस सू कलाज
2: मलान चौर खुलवाओं पर गुलाम मोहम्मद बाट पारो सहलाब ये खोत हाथ फुर्सत लोक नुकसान जनाब दुक दौन दौन अंदर दिव लिस्ट लिस्ट दुदा दम कल दपा सुबह सुबह से दपा कल कम इमदा दुक ना
4: मलिकान पे शरजाम खानी मसला इत पे कोचु मसला अवक नगड़म कहें जनाब ये मलिक महलत कोच अ जनाब आव कहें त्रा ड्रेन खास मज मलिकपुर खास मे ड्रेन अ मगर सम जनाब वस
5: ड्रेन दिन कहें जनाब। अल्लाह पब्द रशीद मलिक अर नमाज पास वसान योर नेरान सो फुल तंग आम गई तमाम योर छत खराब तंग आम वो मेहरबानी करुकाम यह बल्कि हर कुन जाए कश्मीर मंद अंद सबसे बहुत नबर बिल्कुल नियर गई चारवे तंग गई बमार योर
6: गुलाम मोहम्मद गोमदपोरा पे पटन तहसील सनाब से यह जंगली जानवर फेरान सकूल से नहान बचे अड़ान जख्मी गोर अड़न से थप दिवान अड़न से पे इंजेक्शन करें हस्पताल मं गमेंट अत कवजू दिवान कह जानवर कवजू दिवान बचन कुन दिवान तवजू कहें
7: बहुत अब्दुलाहद खांडे शालबो गांधरबल पे मसला अस गए पत्म 30 वरी हाई सकूल सत ग हायर सेकेंडरी गर तरक्की 30 वरी पीठी गई तक हाई सकूल तथा गज तरक्की गालबु गहरबानी कर
8: जीरो नारे पे फारक वन मीर अच्छा ठोर जबरदस्त ये सड़क यह जियारत नीचे सड़क यह अपोर खास पे मगर यह गुम बंद अत लगे रोपये 2 लाख नाम कि ठोर तुलान तुलान वो थो तो मगर त्रवान तमाम माल अत करू हज तहसीलदार तक वात रोड गई।
9: मोहम्मद शफी खान छतावल सरीनगर यह जनाब ये यपन सुन तूत पम्प अल्लाह तला दिन नजर अच्छे मज ग अचन मज ग इन्फेक्शन अमी जबरदस्त बे बा मसला अून ये जबरदस्त हजबल पकुन बना तो मस्तूरत पद अमित खान मन सड़क तुम मर्द बिचार अपोर गई दोस वुंगर हर लगे बेम गाड़ वाले दौरान पते ओत रात वाल बच्चे दौरे जून पत् मगर खबर क्या तुम गई खुदा सहरब से रूद लबि सत पत् मे दौप यह शोक अत
10: जनाब यहाँ हमारे गांव में ना सड़क है ना पानी है ना बिजली है कोई चीज नहीं है सर सरकार की तरफ से हमको कोई सहूलत नहीं है।
1: सामईन कुपवाड़ा जिले के बेशतर इलाकों में तालीमी मंजरनामे और इस सेक्टर के बुनियादी ढांचे की हालत नागुफ्तगू है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदों ने शहर शहर मंजर को बताया कि कई स्कूलों में अमले की कमी है और कई स्कूल इमारतों की हालत इंतहाई खस्ता है। लोगों की शिकायत है कि ऐसे

0: 2019 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी बात अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करके हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर MP3 फॉर्मेट में भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। निगरानी आला तारिक राठर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशिकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मीर अब्दुल हमीद, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। अपने मेजबान सईद मुबशर रफाई और प्रोग्राम की पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।
1: समझ आप शबे खबर की पेशकश समाप्त कर रहे थे। शहर शहर मंजर, यह आकाशवाणी श्रीनगर है और प्रोग्राम पयाम सुबह जारी है। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं स्टूडियोज में रिफत आरा। जी रिफत जी, सुबह के 10 बज रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, मैं देख रही हूं घड़ी, बराबर 10:26 हो गए, 10:26 हो गए
1: हैं।
2: जी। और आपके जाने का वक्त है, ये बताइए कि आप मुझे इजाजत लेना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही, और खुशी होती है कि जब आप उनके साथ ट्रांसमिशन करते हैं जिनके साथ आपने सीखा हो, तो बड़ा मजा आता है। और अपने सामीन को भी बताता चलूं कि ये मेरी खुशनसीबी थी कि आपने उन साथियों के साथ अब ट्रांसमिशन करने का मौका मिलता है जिनके साथ आपने सीखा हो, बोलना सीखा हो, कुछ चीज़ें चलानी सीखी हो।
2: ज़रा नवाजी, आपकी बहुत शुक्रिया फुरकान, आप खुद बहुत अच्छे हैं, आपने खुद सीखने का मादा है इसलिए आप सीखते हैं।
1: तो इसके साथ मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त सामी, लेकिन स्टूडियो में पयाम सुबह जारी कर रही है रिफत आरा जी के साथ लाहौता फरहान
3: जी। समीन को मेरा प्यार और खलूस भरा आदाब सलाम तस्लीम। समीन पयाम सुबह छु जारी तो सुबह 10 वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

इच्छे सीताई हिन जबान योस प्रकाश रमन कश्र छे मगर सूफी महफिलन मंशु ये बात आम यवान पेश करने तो यम दरवेश सिफत इंसान आसान तिम चत बेस मानस कुन यवान प्रकाश रामन छे के नजमत ये तहरीर करमत से कृष्ण अवतार अकनंदुन शिवलगन इसे हिशे बे के नजम प्रकाश राम से त्युत अख शर यम शरी मंज शुद तो साद लफज इस्तेमाल सपदम यम आम जबान हिंद लफज यानी प्रथ कान समझित हेकान वो गो कुन जाय से सख्त लफज तुन कुन जाय शास्त्र ती इस्तेमाल आमत करने ये प्रकाश रामनिस कलाम सनान अच्छे मुख्तलिफ प्रण लफज त्रंट ग तो बाजे चुन मान समझ मगर यम सूफी हजरात यमन कशि सत लगाव तो कशिर सूफी शेरी समझान तिमन पता ज प्रकाश राम क्या यहाँ।

прокашивали яму мою, мою да Андрейчу мою.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नशर सप्दान।
2: سمن محترم تو یسو بوزان صوفی تو ریشی وچارن پٹ مبنی پروگرام صوفی صدا سمن ہمارا پروگرام پیم صبح جاری ہے اور اس نشریات میں آپ پھر جڑ رہے ہیں
3: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح ایک نئی تازگی पयामे सुबह
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
3: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
4: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुबह
5: यारो
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
4: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुबह
6: सुनो सजना,
4: पयामे सुबह।
2: जी हाँ सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 213.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 मीटर पर। इस वक्त आप हमें, ये हमारा लाइव शो है जो सुबह 10:07 से शुरू होकर 11:30 बजे तक हम आपके साथ रहते हैं और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर लाइव इंटरेक्टिव शो। आज के हमारे शो की जीनत बनी है वो खातून जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो मकाम पाया जो यकीनन काबिल फख्र हैं। जी हाँ सामीन, मेरी मुराद है साइमा अहद साहिबा से जो KES हैं और इस वक्त एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपना काम अंजाम दे रही हैं कमरवारी में। तो आइए इनसे बात करते हैं। साइमा अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
2: ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप हमारे स्टूडियो में आई, अपना कीमती वक्त निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। साइमा, आप KES हैं, पहले जानना चाहेंगे आपसे कि किस ईयर में हुआ ये?
7: जी 2023 जनवरी में रिजल्ट आया था और फिर हमने अप्रैल में ज्वाइन किया था।
2: जी अच्छा, ये बताइए आपको कैसे ख्याल आया कि KESE करना है, क्योंकि जब हम मैट्रिक क्वालिफाई करते हैं उसके बाद हमारा बड़ा ये होता है कि इंजीनियर, डॉक्टर, ये जहन में गूंज रहा होता है, तो आपने KES किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं था ये?
7: एक्चुअली मैं बीटेक कर रही थी और मैं एज इनोवेटर काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी
2: जी।
7: तो मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो

0: ऑल इंडिया लेवल पे एक्सेप्ट हुआ था फॉर फंडिंग. प्रिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करती है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को. तो जैसे ही मुझे ऐसे पता चली तो मैंने घर पे जाके बोला, तो मेरे भाई जो है उनने बोला कि कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें कि ऐसे तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है. इमेजिन तुम किसी अप्रूविंग अथॉरिटी पे मतलब इनकम्बेंट हो तो आपको कैसा लगेगा. तो आप इतना थोड़ा ऊपर जाके सोचो बिकॉज यू हैव पोटेंशियल. उनको ऐसे लगता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ. तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ऐसा तो बहुत अच्छा लगता होगा अगर आप किसी अथॉरिटी पे हो और आप ऐसे ऐसे चीज उनको आगे जाके अप्रूव कर रहे हो या उनको इनकरेज कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो. तो फिर मुझे जाके लगा कि नहीं, आई शुड शिफ्ट जो अपना करियर है. तो उसके बाद मैंने केएस के बारे में सोचा और स्ट्राइव किया.
1: अच्छा, तालीम कहाँ हासिल की आपने?
0: बेसिक स्कूलिंग.
1: जी जी,
0: वो लोकल स्कूल ही था HMT में, एक हुसैनी पब्लिक नाम से, वहाँ पे की. लेकिन ज्यादा जो है मेरी फाउंडेशन को जिसने शेप किया है वो हम HMT के क्वार्टर्स में रहते थे. तो वहाँ पे जो कल्चर था वो काफी कम्पिटिटिव था, लेकिन पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, वो जेलसी टाइप कॉम्पिटिशन नहीं था. काफी अच्छा लगता था, लाइक हम सारे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे, इसको कितनी इंग्लिश आती है, इसको कितनी मैथ आती है, इसको कितना साइंस पता है, आपस में ही बच्चे. तो एज अ रिजल्ट क्या है, सारे कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशंस पे आज काम कर रहे हैं. तो उस वजह से मैं मतलब सारा क्रेडिट उसको दूंगी, HMT का जो क्वार्टर्स थे.
1: अच्छा, घर का माहौल इस बारे में थोड़ा?
0: घर का माहौल जो है, मेरी मदर जो है वो बचपन से ही चाहती थी कि हम ज्यादा इधर उधर काम ना करें घर के, हम ज्यादा जो है टाइम वो पढ़ाई को ही दे.
1: अच्छा.
0: तो उन्होंने मुझे कभी घर का काम करने का ना बोला और ना करने दिया.
1: खुशकिस्मत रही हैं आप.
0: जी जी जी, मेरे फादर भी जो है वो भी काफी ही वाज लाइक कि नहीं नहीं आप पढ़ाई कीजिए, काम मम्मी देख लेंगी.
1: अच्छा.
0: तो उस वजह से मैं हमेशा फोकस्ड रही और घर वालों ने भी बोला इम्पोर्टेंट क्या है, तो फिर मुझे पता चली पढ़ाई ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और भाइयों ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया, तो उस वजह से फिर मैं पढ़ाई में अच्छी थी हमेशा.
1: अच्छा माशाल्लाह. ये कि घर का माहौल अगर मुआफिक मिले तो लड़कियां बहुत आसमान छू सकती हैं. आपके साथ हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नगमा आपके लिए प्ले करते हैं.

0: जी अजमीन, आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह प्रोग्राम में। इस वक्त प्रोग्राम की मेजबान है रिफत आरा और मैं उनके साथ हूँ लौता फरहान, और हमारे साथ मौवनत में है शाजिया कादिर। और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारी आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है एक बेहतरीन लेडी, इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, साइमा अहद। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं कमरवारी। तो साइमा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने अभी नगमे से पहले कहा था कि बेसिक एजुकेशन जो है वो आपने कंप्लीट की, उसके बाद अगर कोई केएस करना चाहे तो उसको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब क्या पढ़ाई की ज़रूरत है, क्या पढ़ना है?
1: जी, केएस का जो सिलेबस है उसके लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए
0: जी।
1: तो उसके बाद इसमें जीएस आता है और सीसेट आता है। इसमें तीन स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आपका जो है जीएस और सीसेट। जीएस में आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और सीसेट में बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, वही एबिलिटी वगैरह आपकी कैसी है, तो वो क्वालिफाई करके फिर मेंस आता है। मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, प्री में होता है मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और मेंस में हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये तीन स्टेजेस क्वालिफाई करके इंसान केएस बन जाता है।
2: बहुत अच्छा। क्या बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है केएस के लिए?
1: बहुत ज्यादा तो ठीक है, पढ़ाई तो बहुत करनी है, बट इसमें यह है कि टारगेटेड पढ़ाई करनी है। इसमें इधर उधर इंसान पढ़ने लगे तो फिर सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस बेस पे आते हैं, उसी डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगी, अदरवाइज आप कितना भी पढ़ें फिर सिलेक्शन नहीं होती।
2: अच्छा, मतलब किताबी कीड़ा बनना जरूरी है कि नहीं?
1: ठीक है, अगर कोई ज्यादा पढ़ता है वो तो उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन खाली किताबी कीड़ा नहीं। ये पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसके बाद आप कोई 12 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हो लेकिन पता है क्या पढ़ रहा हूँ, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है।
2: अच्छा, ये मतलब इसके लिए पर्टिकुलर एक ये आता है कि सिलेबस आता है?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, पूरा एक्सप्लेन सिलेबस आता है, उसी के इर्द गिर्द जो है हमारा एग्जाम जो है वो रोटेट करता है।
2: अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो पूरी जर्नी रही ना आपकी
1: जी,
2: इस जर्नी में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा?
1: मेरी पर्सनल कुछ चैलेंजेस थी, जैसे मेरे फादर का जो है ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर वो बेड रिडन है 2018 से, तो काफी उसके बीच मुझे, मतलब पहले भी मैंने दिया था तब नहीं हुआ, काफी चैलेंजेस थे, और वो फाइनेंशियली भी हम काफी अनस्टेबल हो गए थे। हम चारों भाई बहन छोटे थे, पढ़ रहे थे अभी, तो फिर मेरे बड़े भाई ने जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला, तो फिर हम भी थोड़ा थोड़ा फिर वापस ट्रैक पे आने लगे कि नहीं हम कर सकते। पहले तो ऐसे लगा था कि अब कुछ नहीं होगा मुझसे, शायद बीटेक खत्म हो गया, अब शायद आगे पता नहीं क्या हो, बट देन अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद को भी संभाला और फिर पढ़ाई अच्छे से करने लगे। तो बाकी जो चैलेंजेस है वो तो जनरल होती हैं कि इसमें काफी अनसर्टेनिटी, आपको पता ही है 0.01% रिजल्ट आता है सिविल सर्विसेज का, तो उस 0.01 में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, मतलब आप सोचिए कितने परसेंट बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस वजह से बहुत बच्चे जो है डिस्करेज होके छोड़ देते हैं। उनको लगता है एक साल में नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं जो मुझसे पहले भी सिलेक्ट हुए
2: जी,
1: उसके बाद जो मेरे साथ सिलेक्ट हुए, जो हम एक साथ जब हमने स्टार्ट किया था, किसी का मुझसे पहले हो गया, किसी का मेरे साथ, किसी का मेरे बाद, और उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगा जो जर्नी कंटिन्यू करते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाते हैं, और जो छोड़ देते हैं तो
0: वो गिव अप करते हैं,
1: वो छोड़ देते हैं।
2: ये बताइए, ये जो केएस की पढ़ाई है आपने की, और कहीं रुकी आप जहां आपको लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी?
1: नहीं, मैं

0: ही नहीं रुकी। जब मेरा पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मेरा मेन जो है 6 नंबर से रह गया था।
1: अच्छा,
0: तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। मुझे लगा कि क्योंकि मैं उस अटेम्प्ट में उतना अच्छे से नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि सिर्फ 6 नंबर से रह गया, इसका मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं अगर अच्छे से पढ़ूँ, अपना बेस्ट दूँ। वो मेरा बेस्ट नहीं था जो मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ। सिर्फ 6 नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा।
1: यानी उस बार आपने उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर फिर से
0: तो फिर मैंने वो है ना वो अपना दिन रात और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और इस बार मुझे पता थी कि मैं लिस्ट में हूँ, मतलब आई वाज 100% श्योर, एंड अल्लाह का शुक्र है फिर मैं लिस्ट में थी।
1: अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये बताइए, कोचिंग की आपने?
0: कोचिंग मैंने नहीं की। इनिशियली जब मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा, तो मैं यहाँ 1-2 कोचिंग सेंटर्स पे गई। मैंने वहाँ 1-2 महीने देखा भी कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट देखा। फिर मैं एक्चुअली दिल्ली में है एक वो एक रेजिडेंशियल कोचिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे कोचिंग नहीं होती है, बस आप वहाँ रूम आपको मिलता है और लाइब्रेरी वगैरह फैसिलिटी, तो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो हमदर्द स्टडी सर्कल में गई, वहाँ मुझे पता चली कि असल में कॉम्पिटिशन क्या है। यहाँ मुझे उतना नहीं आ रहा था समझ कि कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही पढ़ रही थी। फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने काफ़ी जो जिनका एक बार IPS हो गया था, अब वो IAS के लिए पढ़ रहे थे, सिमिलरली किसी का KS हुआ है वो IAS के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे लोग थे वहाँ। फिर जब मैं उनसे मिली, उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, तो मुझे समझ आया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी रही, पार्ट ऑफ जर्नी रहा। तो उसके बाद मैं एक स्ट्रीमलाइन हो गई मेरी प्रिपरेशन, और उसके बाद मैंने फिर वैसे ही कंटिन्यू किया।
1: अच्छा, कैसा इंपॉर्टेंट बाकी स्टूडेंट कैसा इंपॉर्टेंट कोचिंग करें?
0: कोचिंग अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, पहली बात तो ये है, क्योंकि सब नहीं कर पा, मैं अपने टाइम नहीं कर पाई थी अफोर्ड।
1: अच्छा।
0: तो अगर कोई कर सकता है अच्छी बात है, आपको एक मैं बोलूंगी एक गाइडिंग फैक्टर मिलता है, एक मेंटोर मिलता है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो अपनी जो भी कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, आज यूट्यूब पे सारा एक्सप्लेन है, इवन एवरी टॉपिक, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करके है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ तो खुद ही पढ़ाते हैं, इवन मैं भी पढ़ाती थी इससे पहले, सिलेक्शन से पहले तो हम भी ऐसे ही पढ़ाते थे ऑनलाइन। तो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर कर सकते हैं वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा मान लीजिए एज मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए, मौसीकी तो सुनती होंगी आप
0: जी?
1: कोई पसंदीदा नगमा अपना जो हम इस वक्त प्ले कर पाए आपके लिए?
0: तुम मिले सॉन्ग।
1: मिले, क्या बात है जी, लीजिए आपके लिए पेश करते हैं।

0: किसी डिश का ही सही, अचार का ही सही।
1: सही बात।
0: तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ कर सकती हैं।
1: बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने साइमा, कि एक लेडी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो अपने साथ साथ बहुत लोगों को जॉब में असर कर सकती है। जैसे आप खुद नहीं पकाती हैं तो लोग आपके लिए हैं, तो ये तभी मुमकिन हुआ जब आपने अपना इरादा मुस्तकम बनाया और आपने आपको उस काबिल बनाया कि दूसरे भी आपके काम आ रहे हैं। तो यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जो आप बच्चे आपको सुन रहे होंगे, जो लड़कियाँ आपको सुन रही होंगी, उनके लिए ये, उनकी तरफ से ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे, कि जब आपका सिलेक्शन हुआ उस वक्त आपके घर वालों का और आपका खुद का कैसा क्या फील किया था आपने उस वक्त?
0: जी मुझे याद आ रहा है, जब मेरा रिजल्ट आया रात के 12 बजे आया था। तो मैं इससे पहले एक जॉब कर रही थी, अकाउंट्स असिस्टेंट थी मैं ऑलरेडी। अच्छा। तो मैं हंदवारा में पोस्टेड थी, तो मेरी जो एक फ्रेंड थी उसका मुझसे पहले सिलेक्शन हुआ था, तो उसने मुझे रात के 12 बजे कॉल किया। ऐसे था उस दिन, बोल रहे थे सब रिजल्ट आ रहा है, तो अब सिंस 11:30 तक आया नहीं तो हम सो गए, तो 12 बजे मुझे किसी कोई कॉल कर रहा है, तो मैं देख रही हूँ फ्रेंड है, तो बोल रही है ऐसे रिजल्ट आया तुम्हारा नाम लिस्ट में है। तो मैं उसको बोल रही हूँ किस पेज पे, पहले पेज पे कि दूसरे पेज पे? क्योंकि मुझे था इसमें होता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिल सकता है, पुलिस मिल सकता है या अकाउंट्स मिल सकता है, तो मुझे एडमिन में जाना था। तो मुझे ये था एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, कहीं पुलिस तो नहीं मिल रहा है या कुछ और अकाउंट्स? तो उसे बोला नहीं नहीं तुम्हें एडमिन ही मिलेगा, तुम पहले पेज पे हो। तो तब मैं आई वाज वेरी सेटिस्फाइड के वही मिल रहा है जिसके लिए मैंने कोशिश की।
1: आपके फादर को बहुत खुशी हुई होगी?
0: जी, सिंस आई टोल्ड यू कि वो बेडरिडन ही है, बट ही वाज वेरी हैप्पी। आज भी बहुत खुश होते हैं ये जान के कि मैं ऑफिस में हूँ, ऐसे कर रही हूँ, मैंने ये काम किया वो काम किया।
1: फख्री लम्हा होगा उनके लिए उस वक्त और हमारे लिए तो अब भी, और आने वाले बच्चों के लिए हमेशा ये रहेगा, ये इंस्पिरेशन रहेगी कि आपने ऐसे हालात में पढ़कर अपने आप को साबित किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और जो आपको सुन रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं इस बात को अपने आप में एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे जैसे आप हैं। क्यों रिफर?
2: ज़रूर, बिल्कुल। और ये प्रोग्राम का मकसद भी हमारा यही है कि हम ऐसी खातून को इस प्रोग्राम में लाते हैं जो इंस्पिरेशन हो दूसरों के लिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास वो, जैसे मैंने पहले बोला कि मौके मयसर नहीं आते हैं,
1: वसाइल नहीं होते हैं,
2: तो उस वजह से रुक जाती हैं लड़कियां बेचारी। आजकल वैसे भी दौर नहीं रहा वो जो पुराना दौर था कि बहुत जूझना पड़ता था, हालांकि पढ़ाई के मैदान में लड़कियां सबसे आगे हैं। और जब आप जैसी खातून अपना ये सफ़र बयां करती है तो बहुत सारी लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। एक गाना आपके लिए प्ले करूंगी स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपने एक मकाम हासिल किया है। आपकी चॉइस, हम उसके बाद सुनेंगे।
0: जी।

0: जी हाँ समीन, आप समाप्त कर रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जो कि बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है। इस मॉर्निंग शो की मेज़बानी कर रहे हैं रिफत आरा और मैं हूँ उनके साथ लाहौता फरहान, और हमारे साथ हैं शाजिया कादिर जो कि इस प्रोग्राम की माविन है, और
1: कादिर
0: शाजिया कादिर जो इस प्रोग्राम की माविन है, और हमारे आज के प्रोग्राम में हैं जो रौनक अफरोज शख्सियत हैं वो है साइमा अहद, और उनसे बात कर रहे हैं। साइमा जी, आपसे एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगी, जो ऐसी जैसे ऐसे पक्के इरादे करके पढ़ाई करते हैं कि हमें आगे कुछ करना है और करके दिखाना है, उनको ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते होंगे कि मतलब खुशियों के बाकी सारी चीज़ें जो उनको एंजॉय करनी होती होंगी, क्या इस बीच आपने कोई इस मामले में सेक्रीफाई किया?
2: जी, सेक्रीफाइसेस तो बहुत करने पड़ते हैं जब आप किसी गोल के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, आपको पता हो कि और वो गोल इतना इजी नहीं है अचीव करना, तो काफ़ी सेक्रीफाइसेस, जैसे हम कभी कहीं घर वाले घूमने जाते थे तो मैं नहीं जाती थी, कहीं शादी होती थी तो मैं कभी नहीं पार्टिसिपेट किया है, और कुछ भी हो, कहीं गेस्ट आया घर पे तो मैं नहीं मिलती थी, फिर वो एंड पे आते थे, बेटा ठीक हो, एंड निकलते थे, इतना भी टाइम मुझे लगता था टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, तो मुझे लगता है कभी कभी तो मैं खाना वगैरह भी अपनी ही जगह खाती थी जहाँ मैं पढ़ रही होती थी, और मतलब ये तो लिमिट मैंने पार की थी। मैंने कहीं कहीं पे वो पोस्टर्स चिपकाए थे जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी, तो कहीं जाऊँ वहाँ भी टाइम वेस्ट ना हो किसी और रूम में या कहीं लॉबी में, तो वहाँ भी मैंने कुछ कुछ मैप वगैरह चिपकाए थे सो दैट वहाँ जाके कुछ रिवाइज करती रहूँ, तो सेक्रीफाइसेस तो बहुत किए हैं, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करने दिया मैंने।
0: देखिए, यहाँ एक नुक्ता निकल कर आ जाता है हमारी आने वाली पौध को, हमारी आने वाली जनरेशन को, कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, शादियों में जाना या बाकी चीज़ें या पिकनिक स्पोर्ट्स पे या ये चीज़ें, यह सबसे बड़ी बात जो आपने अभी अभी फरमाई कि वक्त ज़ाया नहीं करना। वक्त ज़ाया हो गया दैट मीन्स कि आपका एक बहुत
2: अपॉर्चुनिटी
0: कीमती असासा चला गया, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी बात बताई आपने, बहुत शुक्रिया।
1: साइमा, ये जो आप स्कूलिंग की अगर बात करें, स्कूल में कितनी शरारती लड़की थी आप, और क्या टॉपर थी?
2: शरारती तो बिल्कुल नहीं थी मैं, काफ़ी वो पढ़ाकू टाइप थी। अच्छा। टॉपर थी मैं, 10th में भी टॉप किया था, 9th

0: में भी किया था, तो 11th में भी किया था, 12th में नहीं
1: माशाल्लाह, क्या
0: किया।
1: बात है,
0: तो
1: माशाल्लाह।
0: ऐसे ही ठीक था, पढ़ाई में अच्छी थी, तो ज़्यादा बाकी तो मैं एक्टिविटी ज़्यादा कुछ नहीं करती थी।
1: मतलब मे हेन ये थर थर वन ये तुम वो मैट्रिकस मज पी यू सी एस टी डी एस मे मे तुम कथ गो कि टॉप टॉप टॉप टॉप तो यम जन वन टॉपर तिंद खेस
0: बिल्कुल, ऐसे ज़रूरी नहीं आप टॉपर रह चुके हों या बहुत पढ़ाई कर। मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने बैच में या जूनियर्स में, जो बहुत ही नटखट टाइप होते हैं, जो पढ़ाई को ज़्यादा उतना नहीं, कि बस पढ़ना
1: लेते
0: नहीं है, मुझे खेलना भी है, मुझे घूमना भी है, मुझे ट्रैकिंग भी करनी है, वैसे लोग भी क्वालिफाई करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि मुझे पहले लगता था टाइम वेस्ट किया तो क्वालिफाई नहीं होगा, फिर जब मैंने अपने ही साथ देखे इतने मतलब ऐसे लोग के जो सब कुछ करते हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सबका अपना अपना जर्नी है, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अगर आप फोकस्ड हैं फिर आप इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, डिपेंड करता है। किसी को लगता है मुझे 4 घंटे में हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं 6 घंटे
2: छः
0: में,
2: घंटे देना
0: तो वो तो
2: पड़ेगा।
0: फिर वैरी करेगा।
1: कुछ भी जो सा फील कि हम सजन बाकी क्लासमेट्स ऐसे तुम पिकनिक गसान या बाकी जायन गसान ट्रैकिंग के लिए जाते हैं स्कूल में अक्सर, तो आपको थोड़ा फील होता था कि बुत क्या गसान कि नहीं शौक ही
0: नहीं, मुझे ऐसे लगता था ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं
2: बेवकूफ। एक्चुअली आप अपने गोल के टाइम बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे, बहुत ज्यादा जिम्मेदार।
1: फिर उनके साथ है आज कोई राबिता जो आपकी स्कूलिंग में?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है। कोई है ऐसा जो उस लेवल पर पहुंच गया जहां आप हैं?
0: नहीं।
1: अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मेहनत बहुत जरूरी है, वक्त जाया नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर अगर हम केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें वक्त जाया करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं
0: नहीं है।
1: देखिए यही है ना, ये हमारे जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि हम वो करेंगे ये करेंगे फिर ये भी करेंगे, तो ये सही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उस पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब कि शरारती लड़की भी नहीं रही आप, फिर स्कूल में क्या करती थी जब कभी फ्री टाइम मिलता था?
0: मैं ऑर्गेनाइज भी करती थी फंक्शंस वगैरह।
1: या कोई थैंक गॉड इतना करती थी।
0: हाँ, वो
1: मैंने सोचा था फिर से मैं पढ़ाई करती
0: नहीं,
1: थी
0: नहीं, नहीं, नहीं। मैं डिबेटिंग भी करती थी, मतलब ऐसे ऐसे जो मुझे लगता था प्रोडक्टिव है, जिनसे टाइम वेस्ट नहीं होता है।
1: जी, जी, जी।
0: तो वो मैंने कंटिन्यू किया जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ भी हम फंक्शंस वगैरह बड़े बड़े, जो आप यूनिवर्सिटी में बड़े फंक्शंस होते हैं, तो गेस्ट एंकरिंग वगैरह भी करती थी। कोई मतलब यही जिससे मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कुछ अच्छा कर रही हूँ, प्रोडक्टिव कर रही हूँ, जिससे मुझे एक्सपोजर या पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तो वैसी चीजें हम करते थे। या इनोवेशंस का भी लगता था, कोई प्रोजेक्ट कुछ आइडिया दिमाग में आता था फिर उस पे काम करते थे, वो जब काम करने लगता था तो वो अलग ही सेटिस्फेक्शन होती थी।
1: सही बात। गरी हम सतन का त्यूत उस फंक्शन उस आसान या क्यों उस आसान बात में इस करा गरी हम ना सतिकार आत्मजन पार्टिसिपेट करना?
0: हाँ, मेरे
1: जोर ओसा गरस
0: जब मेरे भाई की शादी थी इसी प्रिपरेशन में, तो आई वॉज लाइक पता नहीं मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं, मतलब तो
1: अच्छा।
0: भाई आई वॉज लाइक नहीं 2 दिन तो निकालो। तो फिर एक दिन फिर मैं अच्छे से बैठी, मैं मुझे वो पसंद नहीं है ज़्यादा भीड़, फिर गाने चल रहे हैं, फिर मैं बैठी, मुझे बहुत इरेलीवेंट फील होता था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। बट फिर ऐसा है कि कभी कभी एक दिन इंसान सोचता है चलो एक दिन निकाल लेते हैं, लेकिन मुश्किल होती है जब आप मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, तो बाकी आपको सारा लगता है ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं यहाँ मिसफिट हूँ, तो वो फीलिंग आती थी मुझे।
1: अच्छा, मतलब ये कि आपने सोच लिया था मुझे एक बड़े ओहदे पर जाना है तो जाना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत करनी है तो वो मैं करूंगी।
0: बिल्कुल, जैसा जैसा ट्रैकिंग का मैंने आपको बोला, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मेरी बहुत सारी जो मेरे साथ फ्रेंड्स थी तो वो जाती थी ट्रैकिंग पे, एक केएस है हमारी काफ़ी सीनियर, उनके साथ उनका एक ग्रुप था, तो मैं हमेशा खुद को बोलती थी मैं सिलेक्शन के बाद ज़रूर जाऊँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मतलब क्योंकि उसके बाद थकावट होती है, फिर मुझे लगा 1-2 दिन शायद उसी में चले जाएंगे, फिर मतलब ऐसे ही मैं सोचती थी, खुद को ना दिलासा देती थी कि नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा इसको पोस्टपोन करते हैं, ट्रैकिंग तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा।
1: क्या बात,
2: सही बात है,
1: इतनी फोकस्ड थी आप अपने इसके लिए। खैर ये बताइए, कजन्स होते हैं घर में, कभी कुछ हो तो कजन्स आते हैं, उनके साथ कभी टाइम गुजारा कि नहीं?
0: ज़्यादा तो नहीं, मेरे जो है मम्मी वाले कज़न उनके साथ ज़्यादा मतलब कनेक्शंस है, फादर वाले के उनके साथ उतना रहा नहीं कभी।
1: अच्छा।
0: तो वो भी छोटे छोटे ही हैं, कभी आते हैं तो वही हंसी मजाक थोड़ी देर के लिए तो फिर चले जाते हैं। अब तो खैर मैं बैठ सकती हूँ, टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, पहले तो टाइम नहीं मिलता था।
1: तो आप कैसा फील करती हैं आप?
0: अच्छा लगता है बच्चे भी जब आपको देखते हैं। फिर किसी ने परसों मैंने देखा कि एक कजिन ने मुझे ऑफिसर दीदी लिखा था कॉन्टैक्ट, आई वाज लाइक अच्छा लगता है लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, मतलब आपको

0: मतलब सब बोलते हैं कि हमारी ऐसे है, वो ऐसे है, ऑफिसर है,
1: हाँ
0: स्कूल में बोलते
1: क्या
0: हैं, तो
1: बात
0: काफी
1: है,
0: अच्छा लगता है।
1: बड़े फख्र से आपका नाम लेते हैं। अच्छा, तब तो टाइम नहीं मिलता था ना, अब मिलता है टाइम आपको अपने लिए थोड़ा सा कुछ शौक वो पूरा करने के लिए?
0: हाँ, अब तो है टाइम, अब कुछ कुछ कर लेती हूँ, जैसे कभी कभी कुछ गार्डनिंग हो गई, या कभी मन किया कुछ चलो आज ये वाला कुछ बना लेते हैं, तो फिर बनाते हैं, तो
1: जैसे
0: अब तो
1: बिरयानी
0: है
1: बनाती
0: टाइम
1: हैं
0: है।
1: आप?
0: हाँ
1: चलिए बढ़िया। और गार्डनिंग भी करती हैं, म्यूजिक सुनती हैं?
0: ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी कुछ वो रील्स में कुछ वायरल हो जाता है वो पता
1: अच्छा,
0: चलती है, बाकी ऐसा कोई खास शौक तो नहीं
1: खास कुछ शौक ऐसा?
0: है म्यूजिक में।
1: ना ना, ऐसे ही ना नॉर्मल कोई ऐसा शौक, कोई ऐसी हॉबी जो आपको लगा कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था, पहले मेरे पास फुर्सत नहीं थी, टाइम नहीं था, तो अब करूं?
0: मुझे गार्डनिंग का ही अच्छा लगता है, जब मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम द सीड, सीड से शुरू करते हैं। अभी हमने रिसेंटली ना ये स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया है, तो सीड्स उनने काफ़ी रखे थे जर्मिनेशन के लिए, वो उगने लगे, बहुत अच्छा लगा। अभी हमें स्ट्रॉबेरीज निकली थी, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो मुझे लगा ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है, ऐसे लगता है इंसान को बहुत ही कुछ अच्छा किया मैंने, तो
1: बिल्कुल।
0: वो मुझे लगता है शुरू से करना चाहिए था।
2: देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है एक बात हमारे बच्चों को जाननी ज़रूरी है कि अगर आप अपने गोल को कंप्लीट करते हैं, अचीव करते हैं, उसके बाद आपके पास
0: कुछ भी
2: फुर्सत
0: कर
2: ही
0: सकते
2: फुर्सत
0: हैं,
2: है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
2: क्योंकि दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही है, लोग वहीं हैं, फंक्शंस और आती रहेंगी,
0: बिल्कुल
2: लोग और एंजॉयबल मोमेंट्स और मिलेंगी, ट्रैकिंग और होती रहेगी, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है अपनी ज़िंदगी में करने की, तो उसे आप कर ही लीजिए। ये आपकी मतलब ज़िंदगी को देख कर हमें यहाँ पता चल जाता है ना
0: जी
2: रिफत,
1: बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त की कदर जो करते हैं, वक्त उनकी कदर
2: कदर
1: करता है,
2: करता
1: असल में
2: है,
1: ये बात है,
2: सही बात।
1: पहले से ही सिखाई जाती है। जब हम लोअर क्लासेस में होते हैं तो एक हमारा वो आता है
0: बिल्कुल
1: जो उस ना मजमून ईमान, वक्त की पाबंदी,
2: वक्त की
1: वो
2: पाबंदी,
1: मैट्रिक तक चलता है फिर,
2: हाँ सही,
1: तो वक्त की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम कुछ अचीव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल
1: हमारे बच्चे जो इस वक्त वक्त ज़ाया करते हैं मामूली चीज़ों पर, मोबाइल लिया हाथ में तो 1 घंटा उसी के साथ
0: बिल्कुल
1: चले,
0: चला जाता है।
1: रील्स को स्क्रॉल करने में, इससे बेहतर है कि कुछ इनोवेटिव किया जाए, कुछ उस मकसद को पाने की कोशिश की जाए जो मकसद हमारे लिए, हमारे वालदैन के लिए और मुल्क कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा बने, फ़ख्र का मकाम हो।
0: जी सही।
1: तो एक और नगमा आपकी पसंद का हम सुनना चाहेंगे, कौन सा नगमा प्ले करें?
0: फ़हीम अब्दुल्ला जी का जो सॉन्ग आया था सयारा में, जो काफ़ी हिट हुआ था
1: जी,
0: जी, वो वाला
1: ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे।

0: ऐसा है कि आप रुक नहीं सकते हो, अगर आप रुके तो आप कभी इवॉल्व नहीं होंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो ऐसे मेरा इरादा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि मैं आगे कुछ, हमें फेलोशिप के लिए मिलती है अपॉर्चुनिटी, स्टडी लीव हम अवेल कर सकते हैं,
1: जी।
0: तो 4 साल जैसे ही मेरे सर्विस के कंप्लीट होंगे तो मैं बाहर अब्रॉड जाके किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ पढ़ाई करके, सो दैट मेरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो, मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिले बाहर जाके, फिर मैं उसको अपने फील्ड में यूज़ करूँ, तो वो मेरा इरादा है आगे।
2: साहब जी, हमारी यही
0: बहुत
2: दुआ है
0: बढ़िया,
2: कि आप इंशाल्लाह उसमें भी कामयाब हों, और जिस तरह आपने पहला अपना सपना पूरा किया है, आगे का ख्वाब भी आपका पूरा हो इंशाल्लाह। यहाँ हो सकता है कि हमारे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियाँ या लड़के जो केस के लिए जाना चाहते होंगे, और उनके लिए आप उन सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि केस की प्रिपरेशन में ना कितना वक्त दरकार होता है?
0: वक्त तो आज मैंने देखा है एक नई ट्रेंड चली है, 10+2 जो पढ़ रहे होते हैं वो साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होते हैं। अभी कभी हमें किसी कोचिंग सेंटर में एज गेस्ट बुलाते हैं सो दैट हम बच्चों से इंटरेक्ट करें। तो रिसेंटली मैं एक जगह गई थी, वहाँ मैंने देखे 12th के बच्चे बैठे हैं और वो मुझे पूछ रहे हैं, हम 12th भी पढ़ रहे हैं और हमें साथ साथ सिविल सर्विसेज भी करना है, और जिनको अभी ग्रेजुएशन करनी बाकी है तो उनके लिए तो अलग से है। अब किसी ने ग्रेजुएशन किया है उसको डायरेक्ट एग्जाम देना है, उसके लिए अलग टाइम रहेगा। तो ये वेरी करेगा, अगर आप अपनी जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, कुछ घंटे अपनी पढ़ाई को, कुछ घंटे
2: की
0: पढ़ाई को। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फिर आपको फुल फ्लेज्ड अपनी तैयारी जो है करनी है, उसमें आपको किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 3 भी लग सकते हैं, डिपेंड्स किसी का किस अटेम्प्ट में होता है। तो मिनिमम तो आपको 1 साल की पढ़ाई तो मिनिमम है इसमें।
2: अच्छा, 1 साल का वक्त ज़रूर दरकार है। बहुत शुक्रिया। और रिफत, मुझे लगता है नगमा सुने।
1: जी जी, एक मैसेज आपसे लेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुकम्मल होने को है, अभी हमारे पास कुछ वक्त है। एक नगमा आपके लिए प्ले करते हैं, उसके बाद एक खूबसूरत सी मैसेज आपसे लेंगे।
0: जी

0: साइन आपको बताना चाहेंगे कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 213.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.8 मीटर, और आप इस वक्त हमारा लाइव इंटरेक्टिव शो समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम की जीनत है KS ऑफिसर साइमा अहद। तो साइमा जी, अब जो ये वक्त है निकल गया हाथों से, क्या करें। हम चाहते तो हैं कि आपके साथ बहुत सारी बातें हों,
1: सही,
0: क्योंकि आपका लहजा बहुत ही अच्छा है, लेकिन वक्त की कमी है, प्रोग्राम को समेटना भी है। तो आखिर पे एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे उन सभी बच्चियों बच्चों के लिए जो केएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उन्हें।
1: पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका जो इंटेंशन है केएस करने का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एक वाई फैक्टर होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहती हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं है ना, मैं ये क्यों करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपका के लिए मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। और अभी इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे आप इंस्टाग्राम लीजिए, कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है यूथ के लिए। अगर आपके पास वो स्ट्रांग नहीं रीज़न होगा क्वालिफाई करने का, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अपने गोल पे फोकस्ड रहना है, काफ़ी टाइम को यूटिलाइज करना है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहना है। फ़ोन यूज़ ही मत कीजिए, आप इंटरनेट यूज़ कीजिए, किसी पर्टिकुलर सर्च करना है आपको, AI का यूज़ कीजिए अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए। बाकी आपको किसी भी चीज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना है
2: जब तक कि ये हो जाए। सही,
1: बिल्कुल। उसके बाद आपके लिए एवरीथिंग इज ओपन, आसमान खुला है, आप कीजिए जो करना है, बट वंस आपका गोल अचीव हो जाए उसके बाद।
0: क्या बात है, मतलब वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते हैं आप।
1: बिल्कुल
0: साइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इस खूबसूरत मैसेज के लिए भी। हमें यकीन है कि जितने भी हमारे सामीन इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा होगा, कोई ना कोई बात तो दिल पे लगी होगी। हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि आगे भी आप बहुत कामयाब होती जाएं, जो आपके सपने हैं आप उनको साकार करें, आप कामयाबी के जीने चढ़ती जाएं और हम आपको यहाँ बुलाते जाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।

0: सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण, ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. A two-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange

0: फिल्म नगर में आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। वक्त हो रहा है खबरों का, ये समाप्त करते हैं पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 ममालिक मुतहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे के पहले मरहले के तहत कल अबुधाबी पहुंच रहे हैं, जहां वो मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को फरोग देने से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर को नशे से पाक करने

0: के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से शुरू किए गए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर बजाते खुद मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की कयादत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंतजामिया और पुलिस मनुष्यात का नेटवर्क खत्म करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। मनुष्यात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
0: मुख्तलिफ अजला में बेदारी प्रोग्रामों के सिलसिले में भी रोज अफजू तेजी आ रही है। कुलगाम के मिनी सेक्रेटरीट में कल जिले के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम की सदारत में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे कुलगाम नुमाइंदे खुर्शीद पटू ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम में काफी तादाद में तलबा, मुख्तलिफ महकमों के अफसरों और आम लोगों ने शिरकत की। बाद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए DC मौसूफ ने कहा,
2: डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले रिलीजियस लीडर्स के साथ जो है एक मीटिंग हुई, जुमे को जो है अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद जो है योगा हुआ 25 अप्रैल को, फिर मैराथन हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुए, क्रिकेट के, फॉल के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन का आगे स्टार्ट होना है। उसके बाद गर्ल्स के भी जो है क्रिकेट के मैचेस जो है कल टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ, उसमें कुलगाम वॉरियर्स जो है उन लोगों ने उसमें जीत हासिल की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कैंपेन जो है वो चल रहा है।
0: कुलगाम जिले के चिनीगांव फ्रिसल इलाके में पुलिस ने एंटी एनक्रोचमेंट कार्रवाई के दौरान एक बदनामी जमाना ड्रग स्मगलर जहांगीर अहमद भट्ट की गैरकानूनी तौर तामीर की गई 3 दुकान को मुनहदिम कर दिया। खुराक और उम्र सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने नौजवानों से अपील की है कि मुल्क को मनुष्यात से पाक और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मशलेरा बने। SKICC श्रीनगर में यूथ फेस्टिवल आरोहन 2026 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से मुनक़द किया गया ये इवेंट मुल्क के नौजवानों की तवानाई और कायदाना सलाहियतों को जाहिर करने वाले एक मुतहरिक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। वाज़ह रहे कि इस इवेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 300 नौजवानों ने शिरकत की। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो के साथ एक मीटिंग में अवामी नौईयत के कई मामलात, सरहदी इलाकों की तरक्की और इंतजामी इदारा जाति लायमल को मुस्तहकम करने से मुतलिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने दूर उफ्तादा और सरहदी इलाकों में तरक्याती कामों की मौसर अमलावरी के लिए बैन महकमा जाति तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पसिया गिराने और सैलाबों की वजह से मुतासर कुंभों की बाजाबादकारी और इमदाद के अमल का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर भर में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने लेबर महकमे को हिदायत दी कि वो तमाम गैर मुनज़म वर्करों को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें ताकि वो इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा कर सकें। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि UT के 20 अजला में PMSYM के तहत अब तक 99,772 गैर मुनज़म वर्करों को रजिस्टर किया गया है। कॉपरेटिव महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुदगल ने एक मीटिंग के दौरान कॉपरेटिव महकमे से मुतलिक माली साल 2026-27 के बजट कैपेक्स का जायजा लिया। उन्होंने कैपेक्स बजट को पायदार, इदारा जाति, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और कॉपरेटिव सेक्टर में खिदमात की फराहमी के तरीकेकार को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा ने कल जिला कुपवाड़ा में चालू मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इल्तवा में पड़े तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और रुकूमात के मुनसिफाना तसरफ को यकीनी बनाएं। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महीदीन बट, जो पहलगाम एक्सिस के लिए यात्रा ऑफिसर भी हैं, ने कल एक मीटिंग के दौरान यात्रा ट्रैक और बुनियादी कैंपों के लिए एडवांस पार्टियों की तैनाती से मुतलिक मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने मुतलिक अफसरों को हिदायत दी कि बाहमी तालमेल के साथ कामगर की यात्रा के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہیتھ حاضر شبنم وجپور۔ وزیر اعظم نریندر مودی واتن پگہ پانچن ملکن متحد عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے تو اٹلی ہند دور کس گڈنکس مرحلس من ابو ظہبی، یہ تم متحد عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن الزائد النہیان سی دون ملکن درمیان شراکت داری پوچھر دن کن معاملن پٹ کد بات کرن۔ نشہ مکت جموں کشمیر

0: सेफ है यार, लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
1: पर क्या कर सकते हैं?
0: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
2: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: प्रोग्राम बजमे निस्वा का ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी तरफ से खलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। उम्मीद है समय किराम आप सब खैर आफियत से होंगे, खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। समय किराम प्रोग्राम का आगाज हम एक स्क्रिप्ट से करेंगे जो इस प्रोग्राम के नाम रिदवान रशीद ने भेजी है और उनके इस स्क्रिप्ट का अनुवान है कामयाब माशरे में खवातीन का रोल। ये लिखते हैं, माशरे की बुलंदी और जवाल में सबसे नुमाया किरदार एक खातून का होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक पढ़े लिखे माशरे की बुनियाद तालीम याफ्ता और बाइखलाक खातून होती है। खातून माशरे की बुनियादी इकाई है। माशरे में खवातीन का अहम किरदार होता है, लेकिन अपने हिस्से की कारकर्दगी अंजाम देते हुए माशरे को जोड़े रखना और इसमें पैदा होने वाले मसाइल का सामना करना, इन मसाइल को हल करते हुए कामयाब होना, ये सब आसान काम नहीं है। इसलिए खवातीन को अपनी जवाबदेही तय करके बड़े पैमाने पर सब्र तहमुल का मुजाहरा करना होगा। अगर माशरती निजाम में अपने आप को हरफन मौला के किरदार में पेश करें तो अपने काम, अपनी सोच और गौर फिक्र की सलाहियतों के जवाहरात से माशरे को कामयाब बनाने में औरत अहम किरदार अदा कर सकती है। खवातीन सही का साथ देकर और गलत की मुखालिफत करके माशरे को अहम तावन दे सकती है। दौलत, शोहरत और वक्ती चमक दमक के बगैर भी खवातीन अपनी बेहतर कारकर्दगी के जरिए माशरे को कामयाब बना सकती है। इंसानी माशरा मर्द और औरत से तश्कील पाता है और दोनों ही इसकी तैमीर और तरक्की और इसकी इसलाह और सुधार में बराबर के साझेदार है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर एक औरत मजबूत किरदार के मालिक, अपने इरादों की पक्की है, तो अपने घर, क्या समाज और माशरे को भी कामयाब बनाने में नुमाया किरदार निभा सकती है। फरमाया गया है कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि एक औरत की तालीम पूरे खानदान और समाज की तालीम है। और हकीकत भी यही है, क्योंकि खातून वो मजबूत चट्टान है जो अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। और ये भी सच्चाई है कि माशरे की इस्लाह में औरत का रोल निहायत अहमियत का हामिल होता है। इसके लिए जरूरी है कि खातून तालीमी मैदान में आगे बढ़े तो अपने माशरे के लिए मुफीद साबित होगी। एक खातून में ये फितरी सलाहियत होती है कि वो हर बिगाड़ को दुरुस्त कर सकती है। माशरे की इस्लाह और कामयाबी के जमीन में खवातीन की दुनिया सिर्फ अपने घर, अपने खानदान, अपने बच्चों और जाती मफादात तक ही महदूद न हो तो खातून खाना या मुलाजमत पेशा दोनों किस्म की खवातीन अपनी खानगी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ माशरे की बेहतरी और इस्लाह के लिए भी हज़्ब इस्तेआत कुछ न कुछ शराकत कर सकती है। इस फहरिस्त में सबसे अव्वल अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश और तरबियत करना और अहले खाना के लिए घर में सेहतमंद और मुहज़्ज़ब माहौल फराहम करना है। माशरे के लिए कारामद और नाफे अफराद बेहतरीन घरों और खवातीन की आला बेहतरीन तरबियत व इंतजाम का अक्स होते हैं। खातून में कुदरत ने फितरी सलाहियत रखी है कि वह हर बिगड़े काम को दुरुस्त करने में पेश पेश रहती है और कामयाबी की मंजिलों तक माशरे की मुकम्मल

0: ने के लिए काफी होता है। समनकरा अब बात करेंगे अखरोट खाने से बच्चों का दिमाग तरोताजा कैसे रहता है। समनकराम, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और सिलीनियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है जो दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को अफसर्दगी से दूर रखते हुए इनका दिमाग तरोताजा रखना चाहते हैं और इस बात के भी ख्वाहिशमंद है कि बुढ़ापे में वो दिमागी अमराज से महफूज रहें, तो इन्हें बाकायदगी से अखरोट खाने का आदि बनाएं। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च के मुताबिक नौ उम्र के जमाने में जब बच्चे लड़कपन से बलोगत की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका दिमाग भी बहुत सी तब्दीलियों से गुजर रहा होता है, इसीलिए इन्हें इस उम्र में अखरोट खाने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि अखरोट ओमेगा 3 प्रोटीन से मालामाल होते हैं जो दिमाग के अफाल को दुरुस्त रखते हैं। माहरीन के मुताबिक अखरोट में वो तमाम जरूरी अज्जा होते हैं जो उम्र गुजरने के साथ साथ याददाश्त को कमजोर होने से महफूज रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसानी जिस्म और दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है जो अखरोट के अलावा पालक, रोगनी मछली, अलसी के बीजों और सोयाबीन में भी वाफिर पाया जाता है। ताजा तहकीक में माहरीन ने कुछ जानवरों तजुर्बात भी किए जिन जानवरों को अखरोट में शामिल अज्जा दिए गए गजा के तौर पर और उनमें याददाश्त के तजुर्बात किए गए जिनसे साबित हुआ कि अखरोट जहनी और दिमागी सलाहियत बरकरार रखते हैं और डिप्रेशन या मायूसी को भी दूर भगाते हैं। इन जानवरों पर किए गए तजुर्बात से मालूम होता है कि अखरोट खाने से इनके दिमागी खुलियात जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं के दरमियान राब्ते भी मजबूत होते हैं जो याददाश्त और हाफसे को अच्छा बनाते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि अखरोट हमारी नफसियाती सेहत तवाजुन में रखते हैं। इससे कबल इम्पीरियल कॉलेज लंदन के साइंसदानों ने इंकशाफ किया था कि रोजाना अखरोट और दीगर फलियां मसलन बादाम वगैरह खाने से अमराज कल्ब को दूर रखा जा सकता है। यानी अगर आप रोजाना 20 ग्राम नट्स यानी मूंगफलियां, काजू और दीगर गिरीदार मेवे खाएं तो इससे अमराज कल्ब का खतरा 20% तक कम हो जाता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों और अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मिकदार मौजूद होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स की तबाही को रोकने में भी मदद देते हैं। इसके अलावा अखरोट में एक और अंसर सिलीनियम भी होता है जो दिमाग को बेहतरीन हालत में रखता है। तो सामने उम्मीद है आप अपने ग़िज़ा में दूध और अखरोट और जो बाकी गिरीदार मेवे हैं जरूर शामिल करेंगे ताकि हमारी जो सेहत है दिन ब दिन अच्छी और चुस्त रहेगी, ताकि हम एक पुरसकून जिंदगी गुजार सके और छोटे बच्चों को दूध जरूर पिलाएं ताकि उनकी नशोनुमा अच्छे से हो सके। समीन, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगेबान।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
3: पर क्या कर सकते हैं?
2: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
4: आओ चले और एक नया रास्ता चले।
5: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: डिस्कशंस मस्ट एडवांस।
6: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए।

0: चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। नीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद देशों की साझा सहमति है।
1: स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाले भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रूपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश।
3: हमें पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे

0: ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
7: हाँ दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी

0: लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
0: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
4: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
5: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
5: जी।
0: अच्छा।
4: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अरे दुश्मन आ रहे, फायरिंग करो, फायरिंग।
2: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है। हमने एक

0: के को भगा देता है।
1: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
0: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: समीन, आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करता स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
6: पर क्या कर सकते हैं?
5: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
7: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
8: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
9: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

सोनू की, टिक्कू की, स्वीटी। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम और रोचक शर्मा ने गाया है और कुमार कैशार हैं ये इस नगमे की धुन बनाई है रोचक शर्मा ने।

जमीन पर भी नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। 1:50 हुआ चाहते हैं, चंदी लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करेंगे खबरें, जरा सा इंतजार फरमाएं।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिद अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक पुसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सरे फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोजा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामले

0: जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमराह अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जायगार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ एक मामले में छापे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ये छापे गैर मुल्की करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक कानून FEMA फेमा के जाब्तों के तहत 14 लोगों और कंपनियों से वाबस्ता मकामात पर मारे जा रहे हैं। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि इस मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है कि जायगार टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूल रही है। और बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की एमेली शूल्स को स्ट्रेट गेम्स में 28 मिनट में 21-13 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं सत्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के बरियान जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल को स्ट्रेट गेम्स में 21-12 21-19 से हराकर आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2 रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए VD सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. 2-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the 2-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partners

आइए दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं सुमन। शंकर जयकिशन की मौसीकी में हसरत जयपुरी के अशआर हैं और फिल्म का नाम है असली नकली।

समीन, आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुना फिल्म असली नकली में। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया नगमा। शैलेंद्र के अशआर है, फिल्म का नाम है मधुमती।

समीन, आपने मधुमति फिल्म से ये नगमा समाप्त किया, आइए अब प्रेम दवन के अशआर समाप्त करते हैं। आवाजें हैं हेमंत कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश की, जहां फिल्म का नाम है माँ बेटा।

समीन, आपने लता मंगेशकर और मुकेश को सुना फिल्म माँ बेटा में। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप इस वक्त पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से।

जमीन, आपने ये प्यारा सनगमा चुलबुला सनगमा समाअत किया, इसे लिया था हमने फिल्म उजाला से। आवाजें थी मन्नाडे और साथियों की। दोस्तों, आपको बता दें कि आप समाअत कर रहे थे पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे। ये छो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव जहतार अड्डा शहर अठक मीटर ते एफ एम जक त्रै शहर या पांच में गर्जन बैठ सामने मोहतरम दूची ढाई बजे बोलू सोफियाना मौसी की बोजो मकामी रहावी करण पेश उस्ताद गुलाम मोहम्मद साज नवाज दती हिंद हम नवाज।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन सपेर के ठीक 3 बज रहे हैं। अब पेश होता है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्मी नगमे लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे तमाम सभी सुनने वाले और तमाम फौज भाई सही सलामत होंगे, अपना प्रोग्राम सुन रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में नगमों की शुरुआत करें, आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा शेर। शेर यूं है, उम्मीद तो बन जाती तस्कीन तो हो जाती, उम्मीद तो बन जाती तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते वादा तो किया होता।

फाजी दोस्तों, आपने हसन कमाल के अशआर समाअत किए, आशा भोसले भूपेंद्र की आवाज़ों में आपने ये नगमा सुना और फिल्म का नाम एतबार। फौज भाइयों, ये उम्मीद क्या है? अगर देखा जाए तो अंधेरे में रोशनी की एक किरण, उम्मीद, एतबार, नाकामी में कामयाब होने की लगातार कोशिश है उम्मीद, एक ख्वाब, एक लगन, उम्मीद एक सहारा है, एक एतबार है।

वाजपेयी आपने मजरू सुल्तानपुरी के अशार समात किए, आपने नगमा समात किया, आवाज़ें थीं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। दोस्तों, इस नगमे को हमने आपके लिए चुना था फिल्म सितमगर से। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे उम्मीद की। दोस्तों, उम्मीद ही है जो हमेशा मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है हमें। उम्मीद हो तो जीना सीख लेते हैं हम। ये उम्मीद ही है जो हमेशा और हर हाल में हमें आगे बढ़ने और अपने मकासद में कामयाबी हासिल करने की उमंग हम में पैदा करती है। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको दुख या परेशानी का सामना न हो। सीधी सी बात है, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई गम लाहक ना हो, कोई ना कोई मसला और मसाइब से वो दोचार ना हो। परेशानियों से तब भी हम निकल सकते हैं जब हमारे दिल में अच्छे वक्त के आने की उम्मीद बाकी हो। और दोस्तों, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

फौजी भाइयों, आपने अभिजीत की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा समात किया। इसे हमने लिया था फिल्म बेवफा सनम से। जिन दोस्तों ने अपने रेडियो सेट सभी अभी ऑन किए हैं, उन्हें हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव और FM 103.5 MHz पर। दोस्तों, इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH पर, और हम आपसे

फौजी भाइयों, आपने ये मीठी सी आवाज़ समात की, बल्कि आवाज़ें समात की किशोर कुमार और आशा भोसले की। जी हाँ दोस्तों, दो गाना था ये और इसे हमने लिया था फिल्म आंसू बन गए फूल। आंसू बन गए फूल, जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम जिससे हमने ये नगमा आपके लिए चुना था। दोस्तों

अगर गौर किया जाए तो ये इंसान की जो उम्मीद है वो गम की तारीखियों को वक्त आने पर खुशियों के उजालों में तब्दील कर देती है। दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी ताकत है। ये उम्मीद ही है जो हमें टूटने नहीं देती। ज़िंदगी की दौड़ में अगरचे हम कभी गिर जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो ये उम्मीद ही है। उसी उम्मीद के बल पर हम उठकर संभल कर खड़े हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते हैं जब तक कि हम कामयाबी हासिल नहीं कर लेते।

0: फौजी भाइयों, आपने नगमा सुना, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ें थीं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये खूबसूरत और प्यारे अशआर संतोष आनंद के थे और इस नगमे को हमने चुना था आपके लिए फिल्म संतोष से। तो दोस्तों, इस नगमे के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का जो वक्त है मुकम्मल हुआ। चाहता है आपसे लेना चाहेंगे विदा इसी उम्मीद के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ फिर से उम्मीद हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के नगमों का इंतखाब आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दीजिए इसी नगमे के साथ अपनी मेज़बान लाहौत फरहान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद। हम आकाशवाणी की श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 3:50 हो रहे हैं। आइए अब समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास जारी। शोपियां में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मनुष्यात मुखालिफ एक और पद यात्रा का इनकाद। सब जिला अस्पताल हजरत बल का दर्जा बढ़ाने को वजारती कौंसिल की मंजूरी और जम्मू कश्मीर के अवाम को सोलर रूफटॉप्स रियायती नरखों पर दस्तियाब रखने की निजी कंपनियों को दरख्शानदराबी की ताकीद। पेश है खबरों की तफसील। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा का दो रोज़ा इजलास भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में जारी है। मीटिंग की सदारत वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं, जिसमें मेंबर ममालिक के खारजा वज़ीरों के अलावा वफूद के सरबराहान हिस्सा ले रहे हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आलम इस्तेहकाम में अमन और सलामती मरकजी हैसियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत को उजागर करते हैं।
2: Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well.
1: मीटिंग में ब्राज़ील, रूस, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मुतहदा अरब इमारात और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक के वज़राए खारजा शरीक हैं, जो इस इजलास के दौरान बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में शुरू हुई ब्रिक्स खारजा वजीरों की मीटिंग का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर किया कि मगरबी एशिया में कयाम अमन के लिए की जा रही कोशिशें बारावर साबित होंगी। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will put their pressure also and I'm glad the American president is in China and I'm sure China will also play its part so there is peace.
1: नशा मुक्त जम्मू

0: कश्मीर अभियान के तहत आज जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में एक पदयात्रा का अहतमाम हुआ, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने खिताब में एलजी ने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए कमर बस्ता है। हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने खबर दी है कि मनोज सिन्हा ने ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के सरकार के अजम का इदा किया। मुनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में डिप्टी कमिश्नर कोलगाम शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले रिलीजियस लीडर्स के साथ मीटिंग्स हुई, उन्होंने 2500 लेटर्स लिखे डिफरेंट मस्जिदों को। मस्जिदों से जो है कंटिन्यूअस हर जुमे को जो है अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद जो है योगा हुआ 25 अप्रैल को, फिर मैराथन हुआ, फिर उसका डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुए, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन का आगे स्टार्ट होना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कैंपेन जो है वो चल रहा है। पुलिस ने जो है टोटल अभी तक 60 FIR किए हैं, 64 पेडलर्स को अरेस्ट किया है, 3-4 जगह जो है यारीपुरा में डिमोलिशन किया, स्टेट लैंड को रिट्रीव किया, रिहैबिलिटेशन में 350 जो है हमारे जो विक्टिम्स है ड्रग अब्यूज के, उनका जो है 1-to-1 काउंसलिंग जो है हुई, उनको जो है अब मिशन UIHADP और जो मुद्रा योजना PMEGP जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उसमें उनको अप्लाई करा के उनको उनके पैर पे खड़ा करने की स्टार्ट की जा रही है।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाले वज़रा के कौंसिल ने सब ज़िला अस्पताल हज़रत अव्वल का दर्जा बढ़ाने और इसे मुकम्मल करने की मंजूरी दी है। इस मकसद के लिए श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 के तहत बफर जोन पाबंदियों में कुछ नरमी की गई है। यह फैसला सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवाम के लिए तिबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की गर्ज से लिया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां द्राबी ने पायदार और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में काम कर रही निजी कंपनियों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में लोगों को घरेलू इस्तेमाल के सोलर रूफटॉप्स रियायती कीमतों पर दस्तियाब रखें। श्रीनगर में आज इस शोबे की एक निजी कंपनी के अहतमाम से मुनक़द एक तकरीब पर खिताब करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई की सूरत हाल नागुफ्तगू है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल करें।
3: हमारे लोगों को जो अंधेरा होता है घर में, सर्दियों के मौसम में हमें पानी गर्म नहीं मिलता है, हमारे गर्मियों में हमें पंखे नहीं चलते हैं, ये चीजें अगर ये कंपनी यहाँ पे करें तो इनका साथ हर एक देगा। थोड़ा सा सब्सिडाइज जो ये कर ले, मुझे लगता है कि ये चीजें अब हमारे लिए अशद जरूरत है। जम्मू कश्मीर में लोग बहुत परेशान हो गए, अगर अब हमें अपने घरों को अंधेरों को रोशन करना है, हमें इन चीजों को आगे आकर वेलकम करना है।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने UPSC और JKPSC इम्तिहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इस बारे में J&K स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
4: हज कमेटी ने 2023 से इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने, कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाती है विद लाइब्रेरी और रीडिंग रूम हज हाउस में, जो बच्चे हों जो UPSC या JKPSC की तैयारी करते हों उनके लिए ये है। पहले साल 2023 में हमने इसको कोचिंग किया था, लेकिन कोचिंग में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, हमने खाली ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी ही है, यानी बच्चा खुद आएगा और अपनी तैयारी करेगा लाइब्रेरी में बैठ के। तो इसके लिए नोटिफिकेशन हमने कल इशू की है, तो अब बच्चे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो उसके लिए गूगल लिंक जो है वो एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है उसी के अंदर दी गई है, तो ऑनलाइन ही इन्हें अप्लाई करना है। उसके बाद एग्जाम होगा, जो बच्चे बेहतर होंगे उन्हें ये फैसिलिटी दी जाएगी। 50 बच्चे इंशाल्लाह हम साल लेंगे। 2027 मार्च 15 तक रहेगा, जब हमारा हज डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी।
0: कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से श्रीनगर में कल से 3 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज होगा। सुनंदा नेहरू गंजू के साथ रिकॉर्ड किया गया आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा एक खसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नशर होगा। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी श्रीनगर के डायरेक्टर न्यूज़ तारिक राथर। जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेज।

0: में 4 साला अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साला इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल शुरू हो गया है। तफसीलात देते हुए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: आज हमने सुबह 11 बजे लिंक लाइव कर दी है और उस पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पर jkadmissions.in और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
0: क्राइम ब्रांच की जराइम से मुतल्लिक खुसूसी विंग ने जमीन फरोख्त करने के लिए जाली कागजात तैयार करने के एक मामले में बड़गाम और श्रीनगर में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक तुलसीबाग श्रीनगर के तारिक अहमद सोफी और नारकरा बड़गाम के तारिक अहमद वानी ने उस वक्त के पटवारी के साथ मिलकर जमीन के एक रकबे के जाली कागजात तैयार किए और शिकायत दहंता से लाखों रुपये की रकम ऐंठ ली। क्राइम ब्रांच ने लोगों से ऐसे मामलों में होशियार रहने की ताकीद की है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ने अपने कयाम के 20 बरस में मुल्क की 140 करोड़ आबादी का एतमाद जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NDRF के लिए मुनक्कद प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में जब भी कोई आफत आती है तो NDRF के अहलकारों की मौजूदगी मुतासरीन के लिए बायस राहत बन जाती है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सुपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आवाज है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन की। जमीन सुपहर के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
5: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
4: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है ना, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
5: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
4: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
5: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
4: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
5: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
4: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
5: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
4: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
6: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज दा पहाड़ी प्रोग्राम केन कम में तुस दा मेज़बान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया क्वाखता। उम्मीद है तुसी ठीक ठाक होसो ते हमेशा नालो अज भी पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुनदे होसो। सामीन अज वीरवार है ते आओ प्रोग्राम दी शुरुआत करदियां काबिल बुखारी दी आवाज़ बिच इस कवाली नाल।

0: जी सामीन, दमादम मस्त कलंदर तुसा कवाली सुनी, पेश कर रहा से काबल बुहारी। ते सामीन, ज़िरात बधाने वास्ते किसान कोशिशां करदे न, लेकिन कदे कामयाब होंदे न ते कदे नहीं होंदे। हुण मसनूई जहानत AI को अपनाने नाल इसको फरोग मिल सी। हुकूमत दी तरफो किसानां को बेहतर मशोरे फराहम करने वास्ते संती शोबे दे नाल मिलके AI तो लैस फसल दी पैदावारी सलाहियत बधाने, जरी नुकसान को रोकने और कीड़े या बीमारियां दे हमले दी पहले ही पेशगोई करने वास्ते AI ते मबनी आलात दा इस्तेमाल कीता जुल रहा है। मैप माई क्राप इदारे दे शरीक बानी दे मुताबक हिंदुस्तान बिच खेती बाड़ी होण आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी दे नाल बदल रही है। सामीन, गल्लां और भी सांझियां करसां, ते आओ अगे कारी मोहम्मद अशरफ दी आवाज बिच सुनदे आं ए गीत।
1: बंगा पन्निया ते बावा वी मरोड़िया माए, डाडी जालमा है, डाडी जालमा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 4:20 हो गए। पहाड़ी खबरनामा किनका में हाँ लियाकत अब्बास। पहले पेश हैं कुछ खास खबरों दी सुर्खियां। भारत की मेजबानी भी नवी दिल्ली भी ब्रिक्स मुल्कों के खारजा वजीरों का इजलास है जारी। शुपियां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत भी मंशियात के खिलाफ एक और पद यात्रा का किया गया इनकाद। सब जिला अस्पताल हजरत बल का दर्जा बधाने को वजारती कौंसल सुन दी मंजूरी। और जम्मू कश्मीर के लोगों को छतों तक लाई वास्ते सोलर घट कीमतों तक रखने की निजी कंपनियों को दरख्त अंदराबी सुन की ताकीद। हूँ पेश है इन्हों दूजिया खबरों की तफसील। ब्रिक्स मुल्कों के खारजा वजीरों का दो ध्याड़ का इजलास भारत की मेजबानी भी नवी दिल्ली भी चल रहा है। मीटिंग की सदारत वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर कर रहे हैं, जिस विच मैंबर मुल्कों के खारजा वजीरों के अलावा वफूद के सरबराह भी हिस्सा गिन रहे हैं। अपने ख्याल सांझे करदियां वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर सुनाखे जे आलमी इस्तेकाम विच अमन ते सलामती मरकजी हैसीयत की हमल है। उन्होंने सुनाखे जे हाल ही होए तनाजे छड़े मुजाकरात है सफारतकारी की अहमियत को उजागर कर दें।
1: Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well.
0: मीटिंग भी ब्राज़ील, रूस, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मुतहदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका जैसे मुल्कों के खारजा वजीर शिरकत कर रहे हैं, जेडे इस इजलास के दौरान आपसी ते इलाकाई अमूर ता गलबात कर सन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन नवी दिल्ली में शुरू हुई ब्रिक्स खारजा वजीरों की मीटिंग का खैर मकदम करदियां उम्मीद जाहिर की जे मगरबी एशिया में अमन को बहाल करने वास्ते कीते जुड़ियां कोशिशां कामयाब साबित हो सन। श्रीनगर में एक तकरीब के आशिये ता मीडिया नाल गल करदियां उन्होंने सुन आख्या,
2: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will put their pressure also. Yep. I'm glad the American president is in China and I'm sure China will also play its part so there is peace.
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अज जनूबी कश्मीर के शुपियां जिले में एक पद यात्रा का अहतमाम किया गया, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन चांडी दस का विदया किया। अपने खिताब में एलजी सुन आखे जे इंतजामिया जम्मू कश्मीर को नशे थी पाक करने वास्ते लग बन कर खली है। असें नुमाइंदे जानसार अहमद सुन खबर दी है जो मनोज सिन्हा सुन ड्रग समगलों के खिलाफ डाढ़ी कार्रवाई करने के सरकार के अजम का इरादा किया। मंशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दसने
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बुरी आदत ही दूर रखने वास्ते कीते जुड़े

0: होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है पेमेंट गेटवे के थ्रू। सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
1: क्राइम ब्रांच जी जुर्मा थी मुतलक खसूसी विंग सुन जमीन बेचने दे जाली कागज तैयार करने दे मामले बिच बड़गाम तो श्रीनगर बिच छापेमार का कार्रवाई की थी। तफसीलात के मुताबिक तुलसीबाग श्रीनगर दे तारक अहमद सोफी ते नारकरा बड़गाम दे तारक अहमद वानी सुन उस वेले दे पटवारी नाल मिलकर जमीन दे रुकबे दी जाली कागज़ तैयार किए और शिकायत करने वाले नफर थी लखन रुपये की रकम बटोरी। क्राइम ब्रांच सुन लोगों थी इजे मामले में खुशियार रहने की तहकीद की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सुन आखे जे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF सुन अपने क्याम के 20 साल बिच मुल्क के 140 करोड़ आबादी का भरोसा जीतिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बिच NDRF वास्ते मुनक्द की गई प्रेजिडेंट्स कलर अवार्ड तकरीब नाल खिताब करदे उन्होंने सुन आखे जे मुल्क भी जदों भी कोई आफत आती है तो NDRF के अहलकारा की मौजूदगी मुतासर लोगों वास्ते राहत है आसानी का बायस बन जुलती है। अमित शाह सुन आखे NDRF सुन 8.5 हज़ार से ज़्यादा अपने अहलकारा के नाल नाल 10 हज़ार सिविल डिफेंस के जवान और 2,20,000 से ज़्यादा रजाकारा को तरबियत दी है। आखिर तक खास खास खबर एक बार फिर सुनो। भारत की मेज़बानी भी नवी दिल्ली भी ब्रिक्स मुल्कों के खारजा वजीरों का इजलास है जारी। शुपियां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत बिच मंशियात के खिलाफ एक और पद यात्रा का किए गया इनका। सब जिला अस्पताल हज़रतबल का दर्जा बधाने को वजारती कौंसल सुन दी मंजूरी और जम्मू कश्मीर के लोगों को छतों का सोलर लाने वास्ते घट कीमत रखने विच निजी कंपनियों को दक्षिण अंदराबी सुन की ताकीद। इस दे नाल ही पहाड़ी खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी श्रीनगर थी अगला खबरनामा 5:50 का गोजी जबान भी नशो सी। दो इजाज़त, खुदा हाफिज।
2: जी सामीन, खबरों तो बाद फिर तुसदा प्रोग्राम बिच खैर मकदम है। तय सामीन, VBG राम जी मनसूबे वास्ते इस साल मरकजी हुकूमत सुन बजट बिच 95,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा रकम का इंतजाम किया है। सालाना कुल अखराजात 1.51 ट्रिलियन रुपए तो ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस दे तहत पानिया के तहफ़ के मनसूबे, ग्रां देहातां दियां सड़कां, पुल, स्कूलों दियां इमारतां, आंगनवाड़ी मरकज़ और ज़िरात दे मुतालक बुनियादी ढांचे तामीर कीते जुलसन। इस दे अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशना वास्ते कमां दियां जाइयां और शेड बनाए जुलसन। इसी तरह सैलाब तो मुतासरा इलाकों बिच रिटेनिंग वाल ते बाकी आफात तो निबटने वास्ते तामीरात को भी इस मनसूबे बिच शामिल किया गया है। सामीन, प्रोग्राम जारी है ते आओ अगे फयाज़ अहमद खान दी आवाज़ भी सुनदे हैं एक गीत।

जी सामीन, फयाज़ अहमद खान की खूबसूरत आवाज़ में गीत सुनिया, उम्मीद है पसंद आया उसी। ते सामीन, मरकजी हुकूमत सुन मजदूरां दी अदायगी दे बारे में बड़ा दावा किया दे कि मजदूरी बराए रास्त बैंक या डाकखाने खाते में DBT दे जरिए जोली गई सी। हुकूमत दा मकसद 3 दिनां दे अंदर अदायगी करने दा है, जदके ज़्यादा तो ज़्यादा 15 दिन लग सकते हैं। अदायगी बिच ताखीर होने ते मजदूरां को मुआवजा मिलसी और मुतालबे दे बावजूद रोज़गार न मिलने ते बेरोज़गार बता दिता जुलसी। मनसूबे को बेहतर तौर ते चलाने वास्ते इंतजामी अखराजात दी हद 6% तो बधा के 9% कर छुड़ी दी है और फील्ड स्टाफ को वक्त उते तनख्वाह और बेहतर वसाइल मिल सकते हैं। ते सामीन, आओ प्रोग्राम दे आखर ते हंस राज हंस की आवाज़ भी सुन दें। ए सैफ अल मलूक।

जी सामीन, हंस राज हंस दी इस सदा बहार आवाज़ दे नाल ही असदे अज दे पहाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुकम्मल हो गया। अपने मेज़बान ख्वाजा परवेज़ और प्रोड्यूसर मारूफ़ुन निसा जी को अगली मुलाकात तुनी दियो इजाज़त। अल्लाह बेली।

आप समाप्त कर रहे थे पहाड़ी प्रोग्राम ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव ज्यादातर 8.8 मीटर तक FM 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ सन पेट 4:05 मिनट सब सामिन वलियो चलन तो बोझो गुलाम नबी डूलवाल तो सही करण पेश कला में जाम बाज़

0: पाँच बज रहे हैं। एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

उस त्यों अंदाजो लग गया कि रेडियो तमारा समाज वो आपसी राबतों के है। यह भी चीज़ बड़ी जाहिर जी है कि मालियां पर बैठा हुआ आजड़ी ते मांझी ते टोक मां बैठा हुआ लोग जिस कड़ी रेडियो की आवाज़ सुनी ते अपना मनपसंद गीत अपनी मनपसंद गलबात अपना मनपसंद जड़ा प्रोग्राम ही वे जिस कड़ी सुनी ते रेडियो को मकसद जेड़ो है प्रोग्राम पेश करने को वो हल हो जाए ते वाकई गोजरी प्रोग्राम ने अपना लोगों ना अपने नाल जोड़न मां जड़ो किरदार अदा कियो है वो लफ्सा में बयान करने के काबिल नहीं बल्कि वो एहसास को रिश्तो है वो जज्बात को रिश्तो है और उस रिश्ता ना के ना दितो जाए उस बारे कुछ नहीं कहो जा सकतो। आकाशवाणी का 90 साल का इस सफ़र में उसने मुल्क की जितनी खिदमत की है मुल्क की जबाना में इतिहाद आने की जितनी कोशिश की है और जबाना ना फरोग देने की जितनी कोशिश की है निकी निकी बोलियां ना बचाने की जड़ी कोशिश की है और अपनी लाइब्रेरी जिस तरह उसने पढ़ी है फनकारा ना बुला गए गुलूकारा ना बुला गए अदीबा ना बुला गए शायरा ना बुला गए समाजी लोगों ना बुला गए माशरती लोगों ना बुला गए माहरीन ना बुला गए तो मिना लग गया कि रेडियो की जड़ी लाइब्रेरी है जड़ा आर्काइव्स हैं वे इस गनीमत इस असासा दे इस वरसा के नाल भरन होए वहीं ते आकाशवाणी ने यो 90 साल को सफ़र वाकई मुझ कामयाबी के नाल पूरो कियो है। गलबात अगे और भी करांगा ते आओ हम सारा अज आकाशवाणी के ना करा अल्लाह राखा चेची की आवाज़ माँ यो गीत।

आम सुन रहा था अल्लाह रखा चेची की आवाज़ माँ यो खूबसूरत जो गीत। ते आकाशवाणी का इस 90 साल सफ़र माँ आकाशवाणी ने जितनों जबाना ना फरोग दितो है, जितनों निकी निकी बोलियाँ ना उसने बचा कर रखियो है, वाकई इसने मैंने लगे कि जड़ो इस तमद्दन सकाफत या जबाना को जड़ो जखीरो थो उसने अपना आर्काइव माँ अपनी लाइब्रेरियाँ माँ उसने बचा कर रखियो है। ते आकाशवाणी का इस 90 साल सफ़र के बिष्कार उसने निकी निकी बोलियाँ ना जड़ी पहचान ते जड़ी शनाख्त दीती है, वह मिना लगे कि हर एक इदारा वास्ते है मुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल भी है। ते कदे हम 2025 का आदाद शुमार के बारे गल करा ते उस वेले हिंदुस्तान मार रेडियो स्टेशन की तादाद कुल 591 थी, ते जेड़ा 98% मुल्की आबादी तक रसाई रखी, नाल ही नाल मुल्क की 23 जबाना ते 146 बोलियां मां अपनी नशरियात फराहम करें। इसे तरह हम FM नशरियात नामी कदे हम शामिल कर लिया ते तकरीबन 99% लोगों तक आकाशवाणी अपनी जो है ना नशरी खिदमात पेश कर रहे है। ते गलबात अगे और भी जारी रखांगा, ते गीत सुनने जी पहला हम बशीर मस्ताना ते दीपाली बातल की आवाज़ मां।

यो गीत तुम सुन रहे था बशीर बस्ताना ते दीपाली वातल की आवाज़ में। अगे महीना एक और गीत सामने लगो वो नज़र आवे स्क्रीन पर, यो भी आओ तुम सुना दें। यह आवाज़ है मोहम्मद हुसैन मिरासी की।

त सजनो आकाशवाणी ने मोहम्मद हुसैन मिरासी जिसा अल्ला राखा चेची जिसा ते कई पुराना फनकार जड़ा कढ गया बांदे आने रेडियो पर या आकाशवाणी देन है कि मारा कोल है एक जखीरो एक विरसो ते एक विरासत जड़ी वजह हो गई ते आकाशवाणी का तकरीबन ज़्यादातर प्रोग्रामा ना सामीन को खूब प्यार लभो है ते बरसा तक सुन आला का दिलों पर उसने राज की है। आकाशवाणी ते चलन आला गोजरी जबान का प्रोग्राम ने गुजर बकरवाल बरादरी की मुझ सुनी तरह रहनुमाई की है। इनके नालों नाल चल गया आपनों 90 साल सफ़र जड़ो है वो मुकम्मल कियो है। ते अगे सजनों इसरा कर दें कि गीत पेश कर दें थारी खिदमत में।

बड़ो खूबसूरत जो यो गीत ते आज हम आकाशवाणी का 90 साल मुकम्मल होने के बारे गल करन लगा वा। सजनो इस प्रोग्राम के जरिए यानी कि गोजरी प्रोग्राम जो आकाशवाणी ते चले इसके जरिए मखसूस कबायली समाज की भरपूर नुमाइंदगी होती रही है ते इसने कई नवी आवाज़ा नामी मुतारफ कराए हुआ है नाले अवाम ते इस मखसूस मसाइल ते दो चार कौम मां मुझ सारी बेदारी लियाण मां आकाशवाणी को किरदार मुझ नुमाया है। तालीमी मैदान मां बेदारी समाजी शहूर माशरती मसाइल पर गलबात समेत दर्जना किस्म की कौमी बेदारी फैलाण को सिरो आकाशवाणी के सिरबद्ध है ते आकाशवाणी ते चलन वाला गोजरी प्रोग्राम ने अपनी पूरी मेहनत लगन ते जज्बा नाले खलूस नाल प्रोग्राम चला गए इस कौम का मसाइल ना हल कराण गए भरपूर कोशिश की है। सजनों अगे इस तरह करा के बैत पेश कर दें थारी खिदमत मां।

इसके नाल ही गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुकरण आवे। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी, अपना मेजबान डॉक्टर अल्ताफ निजामी ना अगली मुलाकात तोड़ी दो इजाजत। चलां जी फिर, रब रखो।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:50 हो रहे हैं। आइए अब गोजरी में खबरें सुनते हैं। गोजरी खबरों के फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से आप हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे। पहले खबरें गोजरी में।
1: सामीन आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:50 हुए हैं। खबरनामा के नाल पेश है तुफैल हुसैन टंच। पहला इस वेला की खास खास खबर। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालक का वज़राए खारजा को इजलास जारी। शुपिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मनशियात मुखालफ एक और पदयात्रा को इनकाद। सब जिला अस्पताल हजरतबल को दर्जो बदान न वजारती कौंसिल की मंजूरी। तय जम्मू कश्मीर की आवाम न सोलर रूफ टॉप्स रायत कीमतों पर दस्तियाब रखने की निजी कंपनियां न दरख्शंदराबी की ताकीद। पेश है खबर तफसील नाल। ब्रिक्स ममालक का वज़रा खारजा को दो त्याड़ा अजलास भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में जारी है। मीटिंग की सदारत वजीर खारजा डॉक्टर एच शंकर कर रहे हैं, जिसमें मेंबर ममालक का खारजा वजीरों के अलावा वफद का सरबरा हिस्सों ले रहे हैं। अपना ख्यालात को इजहार करता हुआ डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आलमी इस्तकाम में अमन सलामती मरकजी हैसियत को अमल है। उन्होंने कहा कि हालिया तनाजात सिर्फ मजाकरात ते सफारतकारी की अहमियत न उजागर करे।
2: The BRICS meeting is a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework.
1: Meeting ma Brazil, रूस, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतदा अरब अमारात ते जनूबी अफ्रीका जैसा ममालक का वज़रा खारजा शरीक हैं, जड़ा इस अजलास के दौरान बामी ते इलाकाई अमूर व तबादलों ख्याल कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में शुरू हुई ब्रिक्स का खारजा वजीरों की मीटिंग की खैर मकदम करता हुआ अमेज जाहिर की है कि मगरबी एशिया में क्याम अमन के वास्ते की जारी कोशिश बार अवर्ष साबित वेंगी। श्रीनगर में एक तकरीब का हाशियावर मीडिया नाल गलबात करता हुआ उन्होंने क्यों
3: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will put their pressure also and I'm glad that the American president is in China and I'm sure China will also play its part if there is peace.
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कपवाड़ा जिला गार्ड टांगडार करना में SM हिल पर शोरिया गाथा कम्प्लेक्स को इफ्ताह कियो। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि यो नी बटो बैटल फील्ड टूरिज्म न बादो देन में अहमियत को हामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसा इकदाम ते सकाफती विरसा न तहफुज लबन के नाल नाल सरहदी इलाकों की तरक्की भी यकीनी बने।
4: भारत की सैन्य विरासत वीरता की गाथा है, उसे शब्दों में बयां करना ये थोड़ा कठिन काम। लंबे समय तक वो कहानियाँ आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाती थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है, इसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटल फील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा।
1: मंशात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पैगाम।
5: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति

0: अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवाना ना इसे बुरी आदत से दूर रखने के वास्ते दरकार इकदाम का बारामा डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों
2: डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले रिलीजियस लीडर्स के साथ मीटिंग्स हुई, उन्होंने 2500 लेटर्स लिखे डिफरेंट मस्जिदों को, मस्जिदों से जो है कंटिन्यूअस हर जुमे को जो है अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद जो है योगा हुआ 25 अप्रैल को, फिर मैराथन हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुए, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन का आगे स्टार्ट होना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कैंपेन जो है

0: راتھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس این ڈی آر ایف نے اپنا قیام کا 20 سال ملک کی 140 کروڑ آبادی کو اعتماد جیت لیو ہے۔ اتر پردیش کا غازی آباد ماں این ڈی آر ایف کے واسطے منعقدہ پریزیڈنس کلر ایوارڈ تقریب نال خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے کہ ملک ماں جد بھی کایافت آئی ہے تو این ڈی آر ایف کا اہلکاروں کی موجودگی متاثرین کے واسطے باعث رات بن جائے۔ اس کے نال ہی خبرنامہ موقع اگلو خبرنامو آکاشوانی سری نگر تے شام 6:05 پر کشمیری میں نشر ویگو۔ دیو سامین اجازت، خدا حافظ۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں آکرشتا سنگھ۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय

0: स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहातार हट आशार्य हटक मीटर ते एफ एम टू अखत त्रै आशार्य पांच में घटसन बैठ शब जित पांच मिनट सपद सामिन पेश गमी बान हिंद खतर अजुक प्रोग्राम।

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसूआत हैं, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत आज शोपियान में मुनक़द तकरीब में LG मनोज सिन्हा ने की शमूलियत, कई प्रोजेक्टों का भी रखा संग बुनियाद। वादी के कई इलाकों में पानी की कमी को लेकर लोग नाला। वजीर आला मुरबल्ला की सदारत में मुनक़दा काबीना इजलास में सब जिला अस्पताल हजरतबल के लिए मास्टर प्लान में दी गई राहत। MLA थाना मंडी उमर अब्दुल्ला सरकार से नाराज, सरकार को सपोर्ट करने के बावजूद हल्के इंतखाब को तामीराती कामों में नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। और भी मौजूदात हैं आज के शहरबीन में एक वक्त के बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
5: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी,
7: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो, और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
8: याद रहे सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
10: पर क्या कर सकते हैं?
9: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
11: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
12: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
13: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
12: नहीं माँ अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
13: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
12: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
13: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
12: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
13: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
12: हाँ माँ आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
13: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
12: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर, FM 2 103.5 MHz के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन 100 रोजा नशे से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम गुजश्ता 33 दिन से जोरों शोर से जारी है, और इस मुहिम के तहत न सिर्फ जिला बल्कि सब जिला, तहसील और ब्लॉक सतह पर प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। 100 रोजा मुहिम की निगरानी और रहनुमाई जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा खुद कर रहे हैं, और जिला सतह की तकरीबात और पैदल यात्राओं में

0: प्रॉब्लम है। बाबा की कसम मैंने तब से मुंह ही नहीं धोया, कैसे धोऊंगी।
1: पपीवला अनंतनाग में साफ पानी को लेकर मकामी खवातीन का एहतजाज, शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: एक बार ट्राई करके तो देख, तू डरता है? कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा।
4: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
5: क्यों? सुन के डर लगाना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाय टू गुड लाइफ।
6: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण लें और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
7: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
1: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन, जम्मू कश्मीर असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने असेंबली के हाउस कमेटियों की चेयरपर्सनशिप की तकसीम पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द एक अहम इजलास मुनक्कद करके कमेटियों के बायकॉट से मुतल्लिक फैसला करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चेयरमैनशिप की तकसीम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके इत्तेहादियों को गैर मुनसिफाना तौर पर फोकस दी गई है, जबकि अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश जारी है। सुनील शर्मा ने स्पीकर पर जानबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूलों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 54 अरकान वाली हुक्मरान जमात को 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप दी गई है, जबकि 29 निशस्तें रखने वाली बीजेपी को सिर्फ एक चेयरमैनशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को कम नुमाइंदगी देना अवामी मैंडेट की तौहीन है। सभी राज्यों से आरिफ कुरैशी ने खबर दी कि जिले के सब डिवीजन कटरोंका के गांव केवल, तरन और भगोली बुद्दल के लोगों ने तरन भगोली सड़क की खस्ताहाली पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन ने केवल तरन के मकाम पर राजौरी बुद्दल सड़क बंद करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। तरन भगोली सड़क की खस्ताहाली पर मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस सड़क पर कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है और यहां से मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को भी परेशानियों का सामना रहता है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि इस मामले का फौरी नोट्स लिया जाए और जरूरी मरम्मत के साथ साथ अपग्रेडेशन का काम तरजीह बुनियाद पर किया जाए।
8: क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? उमर साहब, एलजी साहब, वो सड़क का काम जो है आज तक मुकम्मल नहीं किया गया है। यानी 2004 में एक सड़क का काम शुरू होता है और 2026 आता है और सड़क का काम मुकम्मल नहीं किया जाता, सड़क को मोटरेबल नहीं बनाया जाता है। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लोगों की और क्या हो सकती है। इसके अलावा हमारा दूसरा मुद्दा था जल जीवन मिशन, जो कि हमारी पंचायत में 4,88,00,000 रुपए की लागत से मुकम्मल होना था, उसमें से सिर्फ 9 वार्डों में से एक वार्ड का काम जो अभी तक मुकम्मल हुआ है। ये हमारे दो इश्यूज थे जिसकी वजह से आज हमने राजौरी चलो की कॉल दी थी और तमाम मर्दोजन खवातीन यहाँ पे रोड पे आए थे सुबह और हमें पुलिस ने यहाँ पे रोककर राजौरी नहीं जाने दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने हमें यकीन दानी कराई कि ईद से पहले पहले आपके तमाम जो जायज मसाइल हैं उनको हल कर दिया जाएगा। और आज हम आपके जरिए से एक बार फिर से ये कह देना चाहते हैं कि तरन से फुगोली जो सड़क है, अगर उसका काम जल्द से जल्द शुरू नहीं किया जाता है, हम दोबारा राजौरी चलो की कॉल देंगे और सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हम हजारों की तादाद में घरों से मर्द, खवातीन, बच्चे तमाम पैदल राजौरी की तरफ मार्च करेंगे। हमारा जल जीवन मिशन का काम अगर शुरू नहीं होता है, मुकम्मल नहीं होता है, हम राजौरी की तरफ मार्च करेंगे। ये आज भी हम आपके जरिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को, जम्मू कश्मीर की बता देना चाहते हैं कि आप हमारे गरीब लोगों का, शराफत का नाजायज फायदा न उठाएं। का जो एरिया है इस सड़क का तरन से फुगोली तक, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हदूद में आता है, जबकि काम जो है स्टार्टिंग 2 पीएमजी एसवाई राजौरी ने किया है और 2 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी रियासी ने किया।

0: अब हमारे लोग जब डिमांड करते हैं कि इस सड़क का काम किया जाए, जब हम राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं वो कहते हैं कि ये 2 किलोमीटर के बाद रियासी के लोग काम करेंगे, जब हम रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं वहां से हमें ये जवाब मिलता है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के हदूद में नहीं आता, हम अपना पैसा यहाँ पे खर्च नहीं कर सकते, तो फिर हम किससे मांगेंगे ये सड़क।
1: सब डिवीजन कटरों का राजौरी में मकामी लोगों का एहतजाज। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कोमानी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की पेंशन ईद उल अजहा से कबल तरजीहन 25 मई से पहले जारी की जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा एक अहम मजहबी त्यौहार है जिस दौरान कुर्बानी, सफर और दीगर अखराजात में इजाफा होता है, लिहाजा बरवक्त अदायगी से लाखों खानदानों को राहत मिलेगी। अब्दुल कोमानी ने मुतालबा किया कि ईद उल अजहा की तातीलात को 4 दिन तक बढ़ाया जाए ताकि लोग मजहबी और खानदानी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और एलजी इंतजामिया अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए जल्द मजबूत फैसला करेगी। समीन बड़गाम के बीरवा इलाके के आरवा में हजरत सईद हैदर बुखारी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस तकरीब में दूर दराज इलाकों से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर दुरूद अज़कार और खतमात मुजमात की एक तकरीब भी मुनक्कद हुई। अब एक और मौजू, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कदा काबीना इजलास में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हजरतबल की अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। काबीना ने श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 के तहत बफर जोन पाबंदियों में नरमी देते हुए इस मंसूबे की राह हमवार की है जो कई बरसों से इल्तवा का शिकार था। हुकूमत के मुताबिक अस्पताल में बुनियादी ढांचे को वसत दी जाएगी और ब्लड बैंक, ऑपरेशन थियेटर और खसूसी तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सके। मकामी लोगों इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अस्पताल में जगह और सहूलियात की शदीद किल्लत थी, जबकि अपग्रेडेशन से हजरतबल और मुल्का इलाकों के आवाम को बेहतर तिबी खिदमात हासिल होंगे। अब एक और मौसू, समी राजौरी के थाना मंडी हल्का इंतखाब से आजाद मेंबर असम्बली मुजफ्फर इकबाल खान इन दिनों जम्मू कश्मीर सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल खान ने उमर अब्दुल्ला सरकार को बगैर किसी शर्त के अपना सपोर्ट दे रखा है, लेकिन उनका इल्जाम है कि मौजूदा सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। राजौरी में हमारे नुमाइंदे आरिफ कुरैशी से बात करते हुए मेंबर मौसू ने इल्जाम लगाया कि उनके हल्का इंतखाब को कम फंड दिए जा रहे हैं, जबकि उनकी पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा को कई गुना ज्यादा दिए जा रहे हैं। मेंबर मसूब का कहना था कि नौशहरा को 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि उनके हल्का इंतखाब को सिर्फ 5 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि थाना मंडी के साथ ही नहीं बल्कि बुद्दल और राजौरी के अराकीन असेंबली के साथ भी गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार रखा गया है। मुजफ्फर इकबाल खान ने खबरदार किया कि अगर यही सूरतहाल बरकरार रही तो वो अवामी हकूक के लिए भूख हड़ताल पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
2: मुझे समझ में नहीं आती कि सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की नौशहरा से इलेक्शन लड़ेगी। मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसको एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से करूंगा, उसके बाद आई विल टेक अ फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल दूंगा मुझे क्या करना है। नबार्ड की प्लॉट सेंक्शन हुई, मुझे 5 करोड़ मिला, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही एक कंस्टिट्यूएंसी को 50 करोड़ मिला। ब्रिजेस सेक्टर में मुझे एक ब्रिज भी नहीं मिला पूरी कंस्टिट्यूएंसी में, दूसरी तरफ 40 करोड़ के ब्रिज। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मैं तो इस जुल्म के खिलाफ मैं धरने पर बैठूंगा, देखता हूं, नहीं तो मैं हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा इसके खिलाफ कि ये जुल्म है। डिस्पैरिटी अगर होगी वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं क्लियर लफ्जों में कहता हूं, अगर मुझे हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा। इसके सियासी रस्साकशी मेरे साथ क्या सियासी रस्साकशी हो सकती है भाई? मैंने तो सपोर्ट की हुई है उनकी, मैं कोई उनके अपोनेंट थोड़ा हूं, मेरे साथ क्या सियासी रस्साकशी हो सकती है? बुद्ध वाले के साथ क्या सियासी? वो भी रो रहा है, वो कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। राजौरी वाला एमएलए कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की नौशहरा से इलेक्शन लड़ेगी। हमने भी तो लोगों को जवाब देना है, हमारे लोगों के साथ क्यों ज्यादती होगी? हमने लोगों को जवाब नहीं देना? ज्यादती अगर इसी तरह रहेगी हालात खराब होंगे यहाँ। मैंने कहा ना, मैं हंगर स्टाइल पे बैठना पड़ा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ।
1: मेंबर असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान उमर अब्दुल्ला सरकार से नाला। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि गोन कोचा इलाके को जाने वाली सड़क की खस्ताहाली के खिलाफ आज मकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहरीन का कहना था कि टाउन के करीब वाका होने के बावजूद इस अहम सड़क को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस आवाम को आमदरफ्त में शदीद मुश्किल का सामना है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक दूर दराज देहात की सड़कों की मैग्नमाइजेशन तो की गई है, तमाम कॉलेज और रिहायशी आबादी को जोड़ने वाली گنکوچا سڑک اب بھی خستہ حالت میں ہے.
3: سڑک چیز نیچ بیمار گچن دون ڈیلوری مے پی ریڈس مز نیم آو کپ نہ سڑک نہ ووٹ منگنے تک پادر سہی لاران ووٹ.

0: ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸੁਚਨਾ ਕਾ ਬੁਚਨਾ ਕਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਨਾਜ਼ਰੇ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤੀ ਹੈ ਗਾਇ ਮੇਲੇ ਹਸ ਟਾਈਮ ਜਨ ਕੀ ਹੈ ਗਾਇ ਬਾਗਨ ਤੇ ਮਤੇ ਹੈ ਪਾਗਈ ਨਾ ਕਵਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਛੁ ਗਛਨ ਕਾ ਵਾਰ ਨੇ ਚਨ ਆਸ ਗਵਾ ਸਰੀਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂ ਬਾਂਡ ਅੰਦਰ ਕੈਂ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਚ ਯਾ ਕਿ ਐਮ ਜੋ ਬਾਂਡ ਯਧਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਪੈ ਯਾ ਛਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਾ ਫਲਾਈ ਯਾ ਛਨ ਆਤੇ ਆ ਕਲਾਈ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾ ਪਰ ਚ ਫਰੈਸ ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਾਹ ਛਨ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਵਨ ਬਾਚੀ ਛਨ ਪੈਵਨ ਨਵਰ ਕਾੜੀ
1: ਓੜ ਚ ਖਸਨ ਚ ਗੋੜ ਖੋਸ ਜੇ ਗੁਨੂ ਕੋਚ ਯਾ ਚ ਕੁਲ ਗੜ ਬੰਨ ਤੇ ਕੁਲ ਯਮਨ ਤੇ ਕੁਲ ਗਾੜ ਹੁਣ ਚ ਬੰਦਸ ਅਸ ਖਾਰਾ ਗੜ ਕਿਤ ਕਿਤ ਖਾਰੋ ਦੇਮ ਕਤ ਯਾ ਸਰਕਿਸ ਹਾਲਤ ਡਰੇਨੇਜ ਚੁਨ ਪਾਵਰ ਚੁਨ ਆਪ ਚ ਲਗਨ ਮੁੰਬਲੀ ਗੜ ਕਸ ਪਾਈਪ ਤੇ ਪੇਟ ਖਸਦ ਗੋ ਆਵੀ
0: ਰੇਤ ਵਾਦਨ ਛਾਪ
1: ਤੇ ਉਹ ਸਫਰ ਚ ਕਰਨ ਇਸ ਅਸ਼ਸ ਦੇ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਯੋ ਸਫਰ ਇਸ ਕੇ ਬਣਾਵਾ ਯੋਰ ਮਕਾਨ ਅਸ ਤੇ ਬਣਾਵਾ ਦਿਲ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਅਸ ਬਣੇ ਵੈਨ ਅਸ ਕੋਰ ਕੇ ਆਖੋਰ ਕੇ ਅੰਗੋਰ ਬਣੇ ਯੋਰ ਮਕਾਨ ਮਗਰ ਇਸ ਤੇ ਸਫਰ ਤੋਲਾ ਉਹਨ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਖਰ ਡਰੇਨੇਜ ਅਗਰ ਡਰੇਨੇਜ ਮੋਜ਼ਸ ਅਗਰ ਅਸੀ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈ ਦੋਇਮ ਕਦ ਗੁਜ਼ਰ ਯਾਦ ਗਸੀ ਨੀ ਕੋਲ ਕੋ ਜਾ ਅਗਰ ਨਬਰ ਸੁਕਾ ਸਿਤੈ ਅਸਲ ਪੁਟ ਅਸ ਸੜਕ ਆਬੋਈ ਦੀ ਸੜਕ ਆਬੋਈ ਦੀ ਸੜਕ ਸ਼ੂ ਅਗਰ ਟਾਊਨ ਅਸ ਅਗਰ ਟਾਊਨ ਅਸ ਅਸ ਚੁਰ ਬਾਸ ਅਸ ਟਾਊਨ ਅਸ
2: ਤਰਾਲ ਕੇ ਗੁਨਕੋਚਾ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਕੋ ਲੇਕਰ ਨਾਰਾਜ਼। اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
3: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
4: मून एस डब्ल्यू आर पी वी सी पाइप एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून एस डब्ल्यू आर पी वी सी पाइप एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून एस डब्ल्यू आर पी वी सी पाइप एंड फिटिंग।
5: अरे, ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
12: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
11: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आस पास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
12: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
11: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
13: अरे माँ, देखो एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
14: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
13: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
14: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
13: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
14: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
13: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
14: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
13: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
14: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
13: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: के इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर लगने वाला हर सर्व, हर स्पाइक और हर डाइव इस बात का ऐलान है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा तरक्की की राह में चुनौतियों का मुकाबला कर रही हैं और वह देश की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बनकर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि टैलेंट को निखारने में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स काउंसिल को कामयाबी हासिल हुई है और ये लीग एक नए स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने में जरूर मदद करेगा।
1: मनोज सिन्हा ने जिले के आरहमा इलाके में 4,94,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए गए कसीरुल मकासिद इंडोर स्पोर्ट्स हॉल को आवाम के नाम वक्फ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले के टंगदार करना में एसएम हिल पर शौर्य गाथा कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि ये संग मील बैटलफील्ड टूरिज्म को फरोग देने में अहमियत का हामिल है। हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद के मुताबिक मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसे इकदाम से सकाफती विरसे को तहफ़ मिलने के साथ साथ सरहदी इलाके की तरक्की भी यकीनी बनती है।
0: भारत की सैन्य विरासत वीरता की गाथा है, उसे शब्दों में बयां करना ये थोड़ा कठिन काम। लंबे समय तक वो कहानियाँ आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाती थी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत आपने तैयार की है, इसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। उसी कड़ी में भारत रणभूमि दर्शन के तहत बैटलफील्ड टूरिज्म एक ऐसा इनिशिएटिव है जो देश की रक्षा के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और नागरिकों के बीच भावनात्मक दूरी को कम करेगा।
1: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाले वजारती कौंसिल ने सब जिला अस्पताल हजरत बल का दर्जा बढ़ाने और इसे मुकम्मल करने की मंजूरी दी है। इस मकसद के लिए श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 के तहत बफर जोन पाबंदियों में कुछ नरमी की गई है। ये फैसला सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवाम के लिए तिबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की गरज से लिया गया है। गौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट पिछले कई साल से इन पाबंदियों की वजह से खटाई में पड़ा हुआ था। मकामी लोगों ने इस अहम फैसले के लिए वज़ीर आला शुक्रिया अदा किया है। दरियास्ता वजारती कौंसिल ने अचन श्रीनगर में 361 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से एक मरबूत 800 TPD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कायम करने की भी मंजूरी दी है। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में तालीमी मंजरनामे और इस सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तकम करने की वादाबंद है। इस बात का इजहार उन्होंने आज गांधीनगर जम्मू में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम तब्दील करने के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया।
2: आज हमारी कोशिश है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां तक हम ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स को तैनात कर सके, चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें भी लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों को मिलके, सरकारी या प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें मिलके ये काम करना है ताकि जम्मू कश्मीर के ऐसे इदारे बन सके जहाँ से हम बेहतर से बेहतर तालीम अपने बच्चों को दे सके और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने टांगों पे खड़ा हो सके,
1: वाज़ह रहे कि मजकूरा स्कूल का नाम तब्दील करके श्री कुलदीप कुमार बड़ियाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है। इसी दौरान वजीर मौसुफा ने आज जम्मू में मैन्यूवरिंग बिजनेस सोसाइटी एंड कल्चर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मौजू पर दो रोज़ा बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। महकमा ज़रई पैदावार देही तरक्की और कोऑपरेटिव के वज़ीर जावेद अहमद डार ने जम्मू कश्मीर में माली मवेशी के सेक्टर में जदीदकारी लाने की ज़रूरत उजागर करते हुए इस सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों को बेहतर वसाइल और तकनीकी महारत फराहम करने पर जोर दिया है। वो श्रीनगर में मुनक़द अफसरों की एक मीटिंग के दौरान वादी में काम करने वाली वेटरनरी इकाइयों की कारगुजारी और इस सेक्टर में चलाई जा रही मरकजी मावनत वाली स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ का जायजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने आज अपने हलके इंतखाब चरार शरीफ पर तवज्जो मरकूज करते हुए जिला बड़गाम के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। स्पीकर मौसुफ ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को तरजीहात में शामिल रखते हुए गवर्नेंस में अवाम को मुकदम रखने पर जोर दिया। उन्होंने तामीर और तरक्की के कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो ने सियाहत के फरोग और माहौलियाती तहफ़ के माबैन तवाजुन पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान कही, जो जम्मू कश्मीर में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए महकमा जंगलात के तैयार करदा जामे मनसूबे का जायजा लेने के लिए तलब की गई थी। نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔

0: का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बारे में डिप्टी कमिश्नर कोलगाम शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, सबसे पहले रिलीजियस लीडर्स के साथ मीटिंग्स हुई, उन्होंने 2500 लेटर्स लिखे डिफरेंट मस्जिदों को, मस्जिदों से जो है कंटिन्यूस हर जुमे को जो है अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद जो है योगा हुआ 25 अप्रैल को, फिर मैराथन हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुए, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन का आगे स्टार्ट होना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कैंपेन जो है वो चल रहा है। पुलिस ने जो है टोटल अभी तक 60 FIR की है, 64 पेडलर्स को अरेस्ट किया है, 3-4 जगह जो है यारीपुरा में डिमोलिशन किया, स्टेट लैंड को रिट्रीव किया, रिहैबिलिटेशन में 350 जो है हमारे जो विक्टिम्स है ड्रग अब्यूज के, उनका जो है 1-to-1 काउंसलिंग जो है हुई, उनको जो है अब मिशन UIHADP और जो मुद्रा योजना PMEGP जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसमें उनको अप्लाई करा के उनको उनके पैर पे खड़ा करने की स्टार्ट की जा रही है।
1: इस दौरान कश्मीर पुलिस की जानिब से वादी के मुख्तलिफ अजला में न सिर्फ ड्रग्स स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है बल्कि इस बुरी आदत में मुलविस अफराद के असासों को भी कुर्क या मुनहदम करने की कार्रवाइयां जारी हैं। एक ताज़ा कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने पंपोश कॉलोनी नूरबाग श्रीनगर में आदिल मंजूर भट्ट नामी एक स्मगलर की 1,20,00,000 रुपये मालियत के असासे को कुर्क कर दिया है। उधर कुलगाम पुलिस ने जिले के चिन्नी गांव फ्रिसल इलाके में जहांगीर अहमद भट्ट नामी स्मगलर की 3 दुकानों को NDPS एक्ट के तहत मुनहदम किया है। दरियासना पुलिस ने कहनुसा बांडीपोरा में 20,00,000 रुपये मालियत का 10 मलरों का जमीन का रुकबा सरबमोहर कर दिया है। ये रुकबा न्यू कॉलोनी सोपोर के माजिद अहमद सोफी नामी एक दहशत पसंद का बताया जा रहा है। अवंतीपोरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट में बी मेडिकल शॉपों की चेकिंग के दौरान कई कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के अहतमाम से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इतिहाद के लिए दौड़ का अहतमाम किया गया। इसमें यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान, इंतजामी अमले, अहलकारों और तालिब इल्मों के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शा अंद्राबी ने पायदार और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में काम कर रही निजी कंपनियों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में लोगों को घरेलू इस्तेमाल के सोलर रूफ टॉप्स रियायती कीमतों पर दस्तियाब रखें। श्रीनगर में इस शोबे की एक निजी कंपनी के अहतमाम से मुनक़दा एक तकरीब पर खिताब करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई की सूरत हाल नागुफ्तगू है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल करें।
3: हमारे लोगों को जो अंधेरा होता है घर में, सर्दियों के मौसम में हमें पानी गर्म नहीं मिलता है, हमारे गर्मियों में हमें पंखे नहीं चलते हैं, ये चीजें अगर ये कंपनी यहाँ पे करें तो इनका साथ हर एक देगा। थोड़ा सा सब्सिडाइज जो ये कर ले, मुझे लगता है कि ये चीजें अब हमारे लिए अशद जरूरत है। जम्मू कश्मीर में लोग बहुत परेशान हो गए, अगर अब हमें अपने घरों को करना है, हमें इन चीजों को आगे आकर वेलकम करना है।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से श्रीनगर में कल से 3 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज होगा। फाउंडेशन की डायरेक्टर सुनंदा नेहरू गंजू के साथ रिकॉर्ड किया गया आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 नशर होगा। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के डायरेक्टर तारिक राथर। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस ने रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट UPSC और JKPSC इम्तिहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इस बारे में J&K के स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
4: पहले साल 2023 में हमने इसको कोचिंग किया था लेकिन कोचिंग में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। वो हमने खाली ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी ही है, यानी बच्चा खुद आएगा और अपनी तैयारी करेगा लाइब्रेरी में बैठ के। इसके लिए नोटिफिकेशन हमने कल इशू की है, तो अब बच्चे

0: अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद एग्जाम होगा, जो बच्चे बेहतर होंगे उन्हें ये फैसिलिटी दी जाएगी। 50 बच्चे इंशाल्लाह हम साल लेंगे। 2027 मार्च 15 तक रहेगा, जब हमारा हज डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी।
1: जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल शुरू हो गया है। तफसीलात देते हुए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: आज हमने सुबह 11 बजे लिंक लाइव कर दी है और उसपे हम देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पर jkadmissions.in, और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार, एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता।
1: क्राइम ब्रांच की जरायम से मुतलिक खसूसी विंग ने जमीन फरोख करने के लिए जाली कागजात तैयार करने के एक मामले में बड़गाम और श्रीनगर में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक तुलसीबाग श्रीनगर के तारिक अहमद सोफी और नारकरा बड़गाम के तारिक अहमद वानी ने उस वक्त के पटवारी के साथ मिलकर जमीन के एक रकबे के जाली कागजात तैयार किए और शिकायत दहिंदा से लाखों रुपए की रकम ऐंठ ली। क्राइम ब्रांच ने लोगों से ऐसे मामलों में होशियार रहने की ताकीद की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के समाजी सियासी सलामती जमहूरी और तरक्याती मामलों पर नायब सदर के साथ तबादला ख्याल किया। पार्टी के मीडिया इंचार्ज प्रदीप मल्होत्रा ने राहुल गांधी को बकौल उनके आए रोज बेरोन ममालिक जाने के लिए तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दोगली सियासत चला रही है। शुमाली रेलवे का जम्मू डिवीजन रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर्स की हिदायत पर जम्मू के डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार की रहनुमाई में कल यानी 15 मई से जम्मू सूबे में माहौलियात के तहफ़ से मुतलिक एक खसूसी मुहिम शुरू कर रहा है। इस बरस के आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से मुनक़द की जा रही ये मुहिम 5 जून तक जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि मुल्क में खाम तेल, रसोई गैस और कुदरती गैस की वाफिर मकदार में दस्तियाबी को यकीनी बनाने की मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर एक बैन वजारती प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में कहीं से भी रसोई गैस की किल्लत की कोई इतला नहीं है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: जनाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर। आज के खसूसी प्रोग्राम में एक ऐसा इवेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम ये कशीर हिस्ट्री फाउंडेशन की तरफ से है, जो कश्मीरी जो लोग हैं उन्हीं की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें जो जैसे कहा जाता है द फर्स्ट ट्रेवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल, इसका जो टाइटल है, इसका जो थीम है। तो इस सिलसिले में हम आज के खसूसी प्रोग्राम में हम जिन मेहमान शख्सियत के साथ बात करेंगे वो हैं सुनंदा नेहरू गंजू जी मैडम। तो उनके साथ हम बात करेंगे, जो डायरेक्टर हैं KHF यानी कशीर हिस्ट्री फाउंडेशन की। तो उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये फेस्टिवल क्या है। इस फेस्टिवल के जो 3 रोजा फेस्टिवल है, 15th, 16th, 17th जो इस महीने का यहाँ पे श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, हम मुख्तसरन इनसे बात करेंगे ताकि हम सबको, हमारे सामीन को ये इल्म हो या ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि क्या फेस्टिवल है। सुनंदा नेहरू गंजू जी मैडम, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस स्पेशल प्रोग्राम में यू आर मोस्ट वेलकम एंड आपका खैर मकदम है।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो द फर्स्ट जो ट्रैवलिंग म्यूजियम या कल्चरल फेस्टिवल जो है, इस फेस्टिवल का मतलब क्या है और इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जी,
1: हमने ये सेक्शन 8 कंपनी बनाई अक्टूबर 2024 में। इट्स अ नॉन प्रॉफिट कंपनी और हमारा मकसद है कि एक म्यूजियम बनाने का, जो ये ऐसा म्यूजियम जो पूरे कश्मीर की एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री को हाईलाइट करेगा और साथ साथ हमारी जो सूफी और ऋषि कल्चर की रिवायतें हैं, हमारे फिलोसफिक इम्प्रिंट्स हैं, नागा शैविज्म और बुद्धिस्ट सूफी इम्प्रिंट्स हैं, उनको सबको लोगों तक पहुंचाने का हमारा एक मकसद है। और साथ साथ में हमारे जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, रिवायतें हैं, इन इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का, उनको सामने लाने का एक अटेम्प्ट है।
0: सुनंदा जी, जैसे जो बताया जा रहा है कि इसमें एग्जीबिशंस होंगी या जो बाकी हाइलाइट्स हैं, जैसे लेक्चर्स होंगे, स्कॉलर हैं हिस्ट्री पे, लैंग्वेज पे, आर्ट एंड कल्चर पे, इसी तरह म्यूजिकल और पोएट्री परफॉर्मेंसेज हैं, सूफी क्लासिकल या फोक ट्रेडिशन जो कश्मीर के हैं, आर्ट गैलरी भी यहाँ पे इसमें डिस्प्ले पे होगी। तो मैडम, हम जानना चाहेंगे कि जो पहला

0: दिन इसका होगा 15 मई फ्राइडे को, तो किस तरह की एक्टिविटीज इसमें प्लान की गई है? जी
1: देखिए, अभी ये हमारा, मैं आपको ये, हमारा फेज वाइज है, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री। फेज वन में हम एक वर्चुअल म्यूजियम बनाएंगे। वर्चुअल मतलब जो नॉट फिजिकल, बिकॉज हमारे पास जगह नहीं है, तो एक वो दर्शाया जाएगा ऑन अ स्क्रीन व्हाट दिस वर्चुअल म्यूजियम विल लुक लाइक। जो हमारे आगे की सोच है वो हम क्या करने वाले हैं इसमें, वर्चुअल म्यूजियम में क्या कवर करेंगे, एक सैंपल होगा। फिर दूसरा, फिर हम देन वील हैव लेक्चर्स, कशीर एंड वी कश्मीरीज, हमारा जो व्हाट इज आर हिस्ट्री, हमारा ओरिजिन क्या है कश्मीरीज का, उसके ऊपर डॉक्टर रतन लाल हांगलू जो एक बहुत ही एमिनेंट हिस्टोरियन है वो बात करेंगे। फिर हमारा दूसरा प्रोग्राम है सोर्सेज ऑफ मिस्टिज्म एंड कश्मीर शैविज्म, वो डॉक्टर हारून रशीद बात कर रहे हैं, वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप कर रहे हैं। फिर हमारे सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, प्रोफेसर अब्दुल रशीद लोन बात कर रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के ही हैं। और फिर हम एक सॉन्ग्स ऑफ लिबरेशन एक है प्रोग्राम, जो हम मिस्टिक्स और जो हमारे मिस्टिक्स हैं कश्मीर के, जैसे लल दैद है, हबा खातून है, हबा खातून इज अ लिरिसिस्ट, बट यू नो जो बाकी हमारे नंद ऋषि हैं, जो हमारे वो उन सब की बात होगी। दो ये ऑलमोस्ट 1.5 आर का प्रोग्राम है, ये पहले दिन का प्रोग्राम है
0: जी। मैडम सुनंदा जी, इसके अलावा जैसे आपने की बात की जो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है, इसी तरह मिस्टिक एंड लिरिक जो है सॉन्ग्स ऑफ लिबरेशन, तो क्या इसमें आपके जहन में ये है या आपने जो प्लान किया हुआ है ये ऑल कंपोनेंट्स ऑन फर्स्ट डे जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या इसमें ये एक ऐसी शक्ल, एक ऐसा फॉर्मेट, ये एक ऐसा तासुर मतलब मिलेगा कि ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी का एक यू नो एक्सप्रेशन है, तो इस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: बिल्कुल, ये इसलिए हम ये कश्मीर है, कश्मीर हिस्ट्री मतलब वी कश्मीरीज, दिस इज इंक्लूसिव, वो मुस्लिम्स हो, पंडित्स हो, सिख्स हो, एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दिस, और ये हमारी पहचान है। सो ये इसके थ्रू हम एक अपना आइडेंटिटी जो है, हमारा यूनिक आइडेंटिटी, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लोगों तक बताना चाहते हैं कि वी आर यूनिक।
0: जी जी मैम, तो अब दूसरे दिन की बात हम करेंगे, जो आपका प्रोग्राम जो शेड्यूल्ड है इसमें जैसे बात की जा रही है स्कल्पचर आइकोनोग्राफी की मेडिवल कश्मीर में, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी क्विजीन, तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं? जी
1: ये तो आइकोनोग्राफी जो मेडिवल कश्मीर में है, यू नो राइट फ्रॉम 7th to 12th century जो हमारे स्कल्पचर्स हैं उसके ऊपर बात होगी। डॉक्टर गौरी पारमू, जो डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रतन पारमू की बेटी हैं, वो बात करेंगी। देन शबीर मिर्जा मॉडर्न कश्मीर के स्कल्पचर और एक आइकोनोग्राफी की बात करेंगे। और सिर्फ क्योंकि हमारी तहजीब जो है सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हमारा खान पान है, हमारी लैंग्वेज है, तो इसके बारे में एक कश्मीरी क्यूजीन, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो उसके ऊपर बात होगी। कश्मीरी लैंग्वेज की एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, उसके बाद में उसके कश्मीरी क्यूजीन के बारे में डॉक्टर सलीम, प्रोफेसर ये श्री सलीम बेग बात करेंगे एवोल्यूशन कश्मीरी ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। डॉक्टर शाद रमजान बात करेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर। और
0: इसमें कहा जाता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये एक ग्लोबल इशू है, सबके लिए है, सारे यू नो अक्रॉस फ्रंटियर्स, यू नो इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रंटियर्स इन द वर्ल्ड, सो ग्लोबल, तो इसको भी आपने इसमें इंक्लूड किया है, जैसे श्रिंकिंग वाटर बॉडीज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, किस तरह से आप इसको यानी एक तरह से आप इसको आपने एमलगेमेट किया है, इंटीग्रेट किया है? जी
1: हाँ जी हाँ जी, बिकॉज सिर्फ हमारी हिस्ट्री सिर्फ पुरानी पास्ट का नहीं देखती है, वो प्रेजेंट का भी देखती है, और हमारे क्या उसके असरात, अभी प्रेजेंट डे के चैलेंजेस क्या हैं, वो भी हम टच करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ पुराने चीजों पे फोकस करें। और हमारे जो क्राफ्ट्स हैं, लिविंग एंड एंडेंजर्ड क्राफ्ट, जो कश्मीर में पहले पुलहोर, वगू,

0: पत्ते ये सब होता था, कांगरी का भी अभी बहुत कम होने लगा है यूज, तो उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इट मींस, वो हमारे लाइवलीहुड को टच करता है, जो कॉमन लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस क्राफ्ट्स में उनकी लाइवलीहुड पे भी असर हुआ है इसका
1: जी। और मैडम इसके अलावा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो बताई जा रही है कि इसके बारे में भी छकरी शाहरुख वगैरह ये सारी चीजें जो हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं कि ये जो आपने एक इंटीग्रेटेड एक इस तरह का यू नो फेस्टिवल जो है फेस्टिवल बिल्कुल सारी चीजें होती हैं, तो आप किस तरह इसको हमारे सामीन को बताना चाहेंगी?
0: ये है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है कश्मीर के, ऑल्दो इसके असर तो इन्फ्लुएंस बहुत सारी जगहों का है, ये भी पर्शियन है, हिंदुस्तानी है, सेंट्रल एशियन है, बट ये इंस्ट्रूमेंट्स हम अभी वी हैव अडॉप्टेड देम, ये हमारी हमारी गोदी में ही जन्मे, मतलब जन्मे हैं और इसको हमने असिमिलेट किया है और एक यूनिक फ्लेवर दिया है इंस्ट्रूमेंट्स को, तो ये भी एक मतलब ये आम लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और कहाँ से आए हैं एंड इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं।
1: जी सुनंदा जी, जैसे आपने छकरी की बात की, देर आर सो मेनी यू नो जॉनर ऑफ जो म्यूजिक के हैं, जैसे यहाँ का एक ट्रेडिशनल, एक तो छकरी हो गई जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे वनमुन है यहाँ का सबका, यानी एक मिला जुला है वनमुन जब भी होता है शादियों पे या कोई और फेस्टिविटीज, यस फेस्टिविटीज होती है, कोई ईद का होता है, होली का होता है, दिवाली का होता है, ऐसी चीजें इसमें आपने शामिल की?
0: अभी हमने वनमुन इसमें नहीं रखा है बिकॉज ये एक दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये आगे के हमारे प्रोग्राम्स में ये सब होगा, आई विल टच ऑन बोथ जो मुस्लिम्स में जो वनमून है, पंडित्स में वो वनमून है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब इवन बांड पत्थर एंड अदर थिंग्स जो हमारे जॉनर्स हैं,
1: लड़ीशा इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू नो
0: लड़ीशा इज ऑल्सो राइट, लड़ीशा भी है
1: जी
0: बिल्कुल, तो ये सब तो करना है बट अभी ये शुरुआत है, तो अभी हम यू नो थोड़े थोड़े से शुरुआत करेंगे पर, और लोगों के सपोर्ट से बिल्कुल हम अगर सबका सपोर्ट हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें।
1: जी सुनंदा जी, इसमें एक और चीज मिली है जैसे क्यूजीन की आपने बात की, बहरहाल वो उसी दिन जिस दिन प्रोग्राम शुरू होगा फेस्टिवल, तो उसमें सलीम बेग साहब इस पे बात करेंगे, लेकिन क्या आपके जहन में ये नहीं आ रहा है जैसे जो वाजवान है वो पंडित्स में भी है, सब लोग हैं, जैसे मुसलमानों के अंदर भी पंडितों के अंदर भी, तो ये सारा जो है वाजवान एक जैसा ही होता है जो हमने देखा है सुना है?
0: प्रिपरेशन अलग हैं पर मतलब सेम है बेसिकली, जैसे कश्मीरी पंडित्स में रिश्ता होता है, हमारे यहाँ वो मत्स होती है, रोगन जोश होता है, उधर वो मतलब क्या बोलते हैं वो आई डोंट नो मर्तवांगन कौरम और यू नो मेथमास, ये सब होता है, तो देर आर डिफरेंसेस बट इट इज बेसिकली द सेम, पंडित्स अनियन प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं whereas that is in the Muslim cuisine. But basically we use the same things, ingredients तो same है, सब्जियाँ सेम है और बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम।
1: सुनंदा जी हम प्रोग्राम के मतलब आई मीन कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, कुछ और चीजें जहन में आ रही है कि ये जो फाइन आर्ट्स का जो कश्मीर में और सारी जो जॉनर हैं जैसे अदब है, लिटरेचर इज देयर, यू नो देयर आर राइटर्स आर देयर, देयर आर डिफरेंट यू नो वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ दिस कल्चर यू नो दिस हेरिटेज एंड ऑल दिस, सो कैसे आप देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट जो है पॉजिटिवली व्हाइल यू नो नेविगेटिंग द मॉडर्न ट्रेंड्स, जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है हर जगह, सो ग्लोबल इंपैक्ट जो है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस है वो हमारे कश्मीर के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं और आ रही हैं एंड इट विल कंटिन्यू टू बी देयर, तो किस तरह से आप देखती हैं कि फाइन आर्ट्स का डेवलपमेंट कैसे होगा कश्मीर में?
0: ये फाइन आर्ट्स के बारे में कश्मीर में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इनफैक्ट मैंने जब मैं आर्ट के बारे में बात करती हूँ या मैं इतने सारे कश्मीरी आर्टिस्ट हैं बहुत ही अच्छे, तो बट फाइन आर्ट्स कैसे यहाँ डेवलप हुआ, क्या उसका ये है अभी स्टेटस, इसके जानने के लिए मैं तो यूनिवर्सिटी भी गई, वहाँ लोगों से मिली, तो मुझे लगा कि काफी कुछ हुआ है और काफी कुछ होना है, तो आई थिंक इट इज अ डेवलपिंग फील्ड।

0: और जब तक लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे ये फील्ड आगे नहीं जाएगा. वी नीड पीपल टू बी सेंसिटिव टू एंड यू नो दे शुड बी सेंसिटिव टू आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स एंड अप्रिशिएट आर्ट अप्रिसिएशन होना चाहिए आवाम में.
1: सुनंदा नेहरू गंजू जी एज डायरेक्टर कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के, तो हमने आज आपसे बात की एज अ पार्ट ऑफ यू नो कर्टन रेजर यू नो इन्फॉर्मेशन टू द पीपल. यहाँ जो है एक ऐसा फेस्टिवल जो हमें लग रहा है कि आपके साथ बातचीत में ये लग रहा है कि बड़ा यूनिक होगा एंड वी होप कि ये यूनिक हो एंड इट वुड यू नो हेल्प अस इन कैटलाइजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीरी सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड व्हाटएवर. सो यस वी आई फील इट इज लाइक दैट. तो हम सुनंदा जी प्रोग्राम चूंकि हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचता है मैं आपसे इजाजत लूंगा और आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका वक्त देने के लिए आपने जो वक्त दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम.
0: थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया.
1: सामईन में इस प्रोग्राम के बारे में चूंकि अब ये फेस्टिवल 15 से 17 तक यहाँ पे होगा तो उम्मीद है कि हमारे सामईन हमारे जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल में जाने के लिए वो जा सकते हैं और देखें कि वहां पे किस तरह के स्कॉलर्स हैं किस तरह के आर्टिस्ट्स हैं किस तरह ये बात हो रही है वहां पे. तो हम अपने मीडियम से अपने आकाशवाणी से हम यही बात कहेंगे कि हमारा आपका जो फीडबैक है इस प्रोग्राम के बारे में तो आप अपना फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं. मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर्स इश्फाक अमर शाह कौशिकी कश्यप और रिकॉर्डिंग मुआविन आसिफ बशीर के हमरा मुझे इजाजत दें. खुदा हाफिज.
2: अभी आप समाप्त कर रहे थे शोबे खबर की ये खसूसी पेशकश. आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है. 8:45 हो रहे हैं. आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था. निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की. केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया. उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता. होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया. और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने सतत विकास को बढ़ावा देने आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे. आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है. ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई. इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है.
4: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो. तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है. इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है. आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है.
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी कल

0: संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उन से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल

0: नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
3: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाए। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं।

0: नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी,
4: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर। मीडियम वेव 13.8 मीटर ते FM 2 73.5 MHz पेट रात संज 9 बजे। सामने वाले कशर मौसी के बोझो दस्तलो कलामी मोहम्मद शफी खान सदाकार शाही मुमताज़।

0: हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खित्ता, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली, नीज, दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अज खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकरर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फहरिस्तों के SIR में मरहला 3 में पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं है। इन 3 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरदमशुमारी के मरहला 2 की तकमील और बालाई इलाकों या बर्फबारी वाले इलाकों में मौसम पर गौर करने के बाद इन 3 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वोटर फहरिस्त की नज़रसानी के अमल में ये एक अहम कदम है। इसका मकसद मुल्क भर में अपडेटेड और दुरुस्त इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करना है। केरलम में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा मीटिंग में VD सतीशन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर लीडर रमेश चिनिथाला पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद तफसील थिरुवनंतपुरम के हमारे नामा निगार से।
1: केरलम में सीनियर कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना दावा पेश किया। इससे कबल आज नई दिल्ली में कांग्रेस की कौमी क़यादत ने कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था। 4 मई को इंतखाबी नतीजे के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से ज़्यादा तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में जारी तबादले ख्याल के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि हलफ बर्दारी की तकरीब पीर के रोज होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: तमिलनाडु में AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी सामी ने आज रियासती गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और SP विलुमनी के जेर क्यादत AIADMK के अरकान कानून साज असम्बली में फूट पड़ने से मुतालिक एक उज़्रदारी पेश की। साबिक वज़ीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर JCD प्रभाकर के साथ उठाएं। मामला ये है कि SP विलुमनी के जेर क़्यादत धड़े में AIADMK के 25 अराकीन कानून साज असम्बली ने TV के सरकार को वोट दिया, जो कि TV के सरकार के खिलाफ वोट न देने के OC मैनियन के जरिए जारी की गई व्हिप की खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज़्यादा अफराद जहां भाग हो गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से जाए वकूँ पर पहुँच कर सर्वे करें। उन्होंने उनसे ये भी कहा है कि वो हर 3 घंटे में मुआवजे की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ो तुंद हवा ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। पटना राजधानी समेत बहुत सी ट्रेनें पटरियों पर दरख्तों के गिरने और OHE वायर को नुकसान पहुंचने के बायस मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकी। बारिश के साथ साथ गर्दोगुबार के तूफान ने फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं ने मकानों की छतों को उड़ा दिया, बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका और बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी में खलल डाला। बहुत बड़ी तादाद में मकानात तबाह हो गए और बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बहुत से लोग जिन्होंने दरख्तों के नीचे पनाह ली थी इस खराब मौसम का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर और वाराणसी शामिल हैं। प्रयागराज में 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि भदोही में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9 अफराद, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद ने अपनी जानें गंवाईं। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाज आराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुज को हर हाल में खुला ही रहना चाहिए ताकि तवानाई की आज़ादाना आमदोरफ्त में मदद मिल सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनाब ट्रंप के की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात खुश

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव जहत्तर हर्ट आशार्य अठक मीटर तो एफ एम टू अखत त्रे आशार्य पाँच में घर सन पे रात सन्ज ठीक दह बजे समीन वलि बोजो साइंस सीरियल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल फार्मिंग।

ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव सहतार हट आशार्य अठक मीटर तो FM 2.75 मेगाहर्ट्ज़ सन पेट समिन वलो नसीम उल हक ने आवाज़ मज़ बोजो कलामे स्वच्छ क्रार।

0: आप समाप्त कर रहे थे पंजाबी प्रोग्राम पेशकश समीना शाह। शब के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नशर होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

0: एस अधीक्षण ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected.

0: sector to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA, 5 years ahead of schedule. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and all northeastern states except Assam. 3 UTs will also be covered in this phase, NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Over 3.94 lakh booth-level officers assisted by 3.42 lakh booth-level agents will cover 36.73 crore electors during the enumeration phase. With this, the SIR of electoral roll will cover the entire country in Phase 3 except Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh. In Keralam, Congress today announced the name of V.D. Satheesan as the new Chief Minister of Keralam. Party's legislative party held at Thiruvananthapuram today formally elected V.D. Satheesan as its leader. Our correspondent reports that senior leader Ramesh Chennitala was not present in the parliamentary party meeting. In Uttar Pradesh, more than 111 people have died and 200 injured in the last 24 hours due to rain, storms and lightning. Chief Minister Yogi Adityanath directed the district magistrate and relevant officials to immediately conduct a survey on the spot. In IPL cricket, Punjab Kings have set a target of 201 for Mumbai Indians at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamsala tonight. Mumbai Indians were 173 for 4 in 18 overs when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Hamari awaaz ab tak Akashwani ke Srinagar station se pahunch rahi hai. Medium wave 268.8 meter aur FM2 103.5 MHz पर शब के 11:10 हुए हैं। सामिन, आज के नशरियात बर्खास्त करने से पहले एक नज़र डालते हैं कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले चंद प्रोग्रामों पर। रात 9:30 पर सेहत से मुतलिक फ़ोन इन प्रोग्राम पेश होगा हेलो रेडियो क्लिनिक। शब 10:30 पर आप कश्मीरी नातिया कव्वाली सुनेंगे। सुबह का ही प्रोग्राम पेश होगा सुबह 6:35 पर। लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह नशर होगा सुबह 7:10 पर। सुबह 8:15 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा आयुष सेहत उज़ामिन। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफ़र ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। कल के प्रोग्राम का मौजू है तोहमत लगाने की सज़ा। मुकर्रर है मौलाना फैयाज अहमद जरू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपरा। मकामी अखबारात की सुर्खियां आपके लिए पेश की जाएंगी सुबह 9:00। सुबह 10:00 सूफी सदा प्रोग्राम पेश होगा। कल का प्रोग्राम सूफी शायर वाज महमूद से मुतलिक है। तहरीर गुलाम नबी शाकिर। इंटरैक्टिव लाइव शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। मंजूर अहमद शाह और साथी छकरी और रुख में कलामे शहबाज हाकबारी पेश करेंगे सुबह 11:30 पर और कलामे गुलाम रसूल आखून दिन में 2:30 पर। बज़्म-ए- निस्वां प्रोग्राम पेश होगा 12:40 पर। प्रोग्राम में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर बात होगी। मेहमान है मारूफा शाह। NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग नश होगा दिन में 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 पेश होगा। पंजाबी प्रोग्राम नश्र होता है 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम रोज़ की तरह आप सुनेंगे शाम 5:00। शाम 6:05 पर प्रोग्राम नश्र होगा गमी बाइन हिंद खतरे। शहरबीन शाम 7:00 पेश होगा। वादी की आवाज़ रात 8:00 और रात 8:30 पर स्पोर्ट्स टाइम पेश होगा। सामीन, ये थी तफसील कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले चंद खास प्रोग्राम।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, संगीत जतिन ललित का और बोल आनंद बख्शी के। दोस्तों अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजार से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का और बोल मीर तकी मीर के।

दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कितना भी सुन लो लेकिन दिल नहीं भरता। हमारे भारतीय संगीत में न जाने कितनी ही ऐसी सुरीली आवाजें हुई हैं जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है।

फिल्म किनारा से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए दोस्तों, अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जहरीला इंसान से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ऐसे में वो हमराही वो हमसफर जब हमारे सामने आ जाए तो हमारे पांव अक्सर जमीन पर नहीं पड़ते, हमारा मन झूम उठता है और मन के साथ साथ हमारे पांव भी थिरकने लगते हैं। अगला गाना भी कुछ ऐसा ही अनुभव कराने वाला है।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, जब हमें किसी का वर्षों से इंतजार हो,

फिल्म घर से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, संगीत आर डी बर्मन का और बोल गुलजार के। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

दोस्तों, मोहब्बत भरी मुलाकात हमेशा खास होती है। नावट नहीं होती, बस मासूमियत होती है। जब आप किसी को पहली बार प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं, तो समझ लीजिए दिल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि कभी कभी तो एक ही नजर में हो जाता है। तो अगर आपको भी याद है वो पहली मोहब्बत भरी मुलाकात, वो पहली मोहब्बत भरी मुस्कान, तो ये गीत आज आपके लिए है।

0: फिल्म साजन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। श्रोताओं, अगला खूबसूरत गीत बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म हस्ते जख्म से, आवाज मोहम्मद रफी और बलबीर की, संगीत मदन मोहन का और बोल कैफी आजमी के।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादर

0: और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनसे हर 3 घंटे में मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। वहीं खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In the session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi today on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest-growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA 5 years ahead of schedule.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है ज्वेल थिफ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। पूरे खाली घर में नितांत बैठी मैं और बाहर से आती ये बारिश की बूंदों की टिप टिप की ध्वनि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है।

जैसे किसी ने कोई मधुर संगीत छेड़ दिया हो और मैं मंत्रमुग्ध होकर इसकी ओर खींची चली जा रही हूं। घर में जब पेड़ पौधों को देखती हूं सभी खुशी से झूम उठते हैं और वर्षा के स्पर्श मात्र से मुझे भी ये बारिश उतना ही सुकून देती है, मेरे तपते मन को थोड़ी सी शीतलता और आंखों से बहते आंसुओं को छुपाना सहज हो जाता है और मैं घंटों बिता देती हूं बारिश में भीगते हुए। ये मेरा सबसे पसंदीदा मौसम जो ठहरा। अगला गीत फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, आवाज मुकेश की। आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत, आवाज है लता मंगेशकर की।

कितनी खूबसूरत बात है कि पुराने पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हवाएं तेज हैं, बल्कि इसलिए कि पुराने के जाने का समय

आ गया है। अब नई कोपलों का आगमन हो चुका है। छोटे पत्ते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इस तरह वीरान हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। यहां भी पतझड़ आता है जो खाली कर जाता है किसी अपने की जगह, लेकिन वो छोटी कोपलें जल्दी ही भर देती हैं उस जगह को अपने रंग बिरंगी छटा से। वीरान कुछ नहीं रहता, बस दुनिया में आना जाना जारी रहता है और यही नियम प्रकृति का सबसे खूबसूरत नियम है। अगला गीत फिल्म का नाम है राजपूत, आवाज किशोर कुमार की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में वार्ता की।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत, फिल्म का नाम है गीत और आवाज है मोहम्मद रफी की।

अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से, अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया। मन की खिड़की थी आंखें, जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। जो कुछ भी छुपा था मन में वो सब आंखों में दिखा। अजीब रिश्ता रहा मन का आंखों से। कभी आंखें खाली थी और मन भरा था, कभी आंख भर आई और मन खाली हो गया, और मन खाली हो गया। अगला गीत, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, आवाज है कुमार शानू की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की।

यही सोचकर चुरा लिया था, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने, यही सोचकर चुरा लिया था एक रुमाल उसका मैंने। मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, मोहब्बतें कहाँ मुकम्मल होती हैं, उसको तो बिछड़ ही जाना था। रखती हूँ कैद में छुपा हवाओं से उसकी खुशबू को, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था, इसी के सहारे बाकी उम्र जो बिताना था। अगला गीत, फिल्म का नाम है मेरे सनम और आवाज है मोहम्मद रफी की।

यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। यूं कस के हाथ थामे रहना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। खुद ही पूछ लेना हाल मेरा कि तुमसे छुपाती बहुत हूं। जानते हो ना, भीतर बहुत से समुद्र छुपाए, मैं मुस्कुराती बहुत हूं। मैं मुस्कुराती बहुत हूं। यूं कस के हाथ थामे रखना कि मैं लड़खड़ाती बहुत हूं। अगला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

और अब वक्त आ चला है कि एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म का नाम है कामचोर।

वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। वो जो लफ्जों में कहीं इकरार रह गया, दिल के भीतर ही मगर एक राजदार रह गया। हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, हमने चाहा था कहें सब कुछ सलीके से मगर, होठ चुप थे आंख में बस एक संसार रह गया, आंख में बस एक संसार रह गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म, आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गीत, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। चांद ढलता ही रहा, सूना सा आंगनदार रह गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया। तुम गए तो यूं लगा जैसे समय थमसा गया। घड़ी चलती ही रही पर दिल हिलाचार रह गया। घड़ी चलती रही पर दिल हिलाचार रह गया। रात भर बीते हुए लम्हों का आकार रह गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बाबू, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते फिर मिलने के वादे के साथ और एक खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिल्म का नाम है हम जोली, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद सुरभि होंगी आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस जिंदगी में कुछ रिश्ते शोर से नहीं, आवाजों से नहीं, बल्कि एहसास की एक प्यारी डोर से बंध जाते हैं। और जब ये दिल जुड़ जाते हैं तो हर धड़कन एक कहानी कहने लगती है। तो चलिए इसी बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ हम और आप सुनते हैं ये सदाबहार नगमा। फिल्म है धरती कहे पुकार के, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है हमराही और सुरभि है आपके साथ। दोस्तों, ठंडी हवाओं का अपना एक अलग ही जादू होता है, एक अलग ही मिठास होती है। लेकिन कई बार जब करीबी व्यक्ति, वो इंसान जिससे दिल लग गया हो, वो दूर रहे और कुछ पुरानी यादें दिल में कसक बनकर उभर आए, मीठे एहसास या ये कहा जाए कि दिल का दर्द उभर कर दिल के करीब आ जाता है, तो चलिए सुहाने से मौसम में सुनते हैं हम और आप मिलकर ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको। मैं दुश्मनों के बहुत ही करीब रहता हूं, समझ के सोच के यारों में ढूंढना मुझको। खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, नजर नवाज नजारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको। और दोस्तों, रात की महफिल में कभी कभी जहां मोहब्बत की, इश्क की, दर्द की बात हो रही होती है, ऐसे में लोक रंग और शरारत का तड़का लगना भी जरूरी होता है। तो चलिए सुनते हैं मधुमती फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज से सजा चुलबुला गीत आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं हमराही और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, कुछ गीत सिर्फ धुन नहीं होते बल्कि वो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी अपने की याद जब उठती है या फिर कभी किसी बिछड़ते रिश्तों में कसक हो आती है और कभी दिल की वो खामोशी जिसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। तो आज की इस रात एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसकी मिठास और दर्द सीधे दिल को छू जाते हैं। रफी साहब की दिलकश आवाज में चलिए सुनते हैं

प्यार में कभी रूठना होता है तो कभी मनाना होता है, और बस किसी अपने का साथ इस सफर को बहुत खूबसूरत बना देता है। पुराने दौर के गीतों में यही सादगी और अपनापन तो दिल को छू जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है चोरी चोरी। फिल्म का सदाबहार दिल को सुकून देने वाला गीत लता जी और मन्ना डे साहब की आवाज में।

कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि रात की खामोशी में दिल के और करीब आ जाती हैं। किसी की आवाज, किसी की मुस्कुराहट और कुछ अधूरे पल दिल को चुपचाप छू जाते हैं। इसी मीठी कसक और यादों के एहसास के साथ चलिए चलते चलते सुनते हैं पारसमणि फिल्म का ये गीत।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तेज

0: दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी
0: व्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इसी योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 लोगों से अधिक की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। वहीं गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। आजाद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अपलम चपलम। दोस्तों, कभी कभी किसी की मुस्कुराहट दिल की सारी उदासी दूर कर देती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो याद आते हैं तो माहौल में एक अजीब सी, एक खूबसूरत सी, मीठी सी रोशनी घुल जाती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पारसमणि,

पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग है, थोड़ी शरारत, थोड़ी मासूमियत और ढेर सारे खूबसूरत एहसास साथ में। दोस्तों, जब मुस्कुराने और जिंदगी जीने को लेकर एक अंदाज की बात की जाए तो ये गीत मस्ती भर देते हैं, आत्मविश्वास और दिलकश अदाओं से सीधे दिल में उतर जाते हैं। और ऐसे में जब बात हो एक ऐसे गीत की जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ हो और साथ में महमूद साहब की मस्ती जुड़ जाए तो ये महफिल अपने आप रंगीन हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं गुमनाम फिल्म का ये बहुत ही शानदार गीत रफ़ी साहब और महमूद की आवाज़ में।

ताले तग धुम तग ताले तग धुम तग धला अंग तग धुग तग तादिगे न तग नख तग धुम तग नख नाग धुम तग नाग नाग धुम तग नाग नाग जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दागु तारी गेटे तारी जम धरिता जग धरिता जन जाने को गुदारी दागु तारी गेटे जम धरी जग धरी जग नग नाग तज जिंद तज जिंद तज जम धरी जग धरी जाने जाने को

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। कभी कभी चोट दुश्मनों से नहीं बल्कि उन अपनों से मिलती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब दर्द दिल से निकलकर लफ्जों में बयां होता है तो वो सीधे एहसास तक पहुंच जाता है और इसी दर्द को, इसी सच्चाई को बयां करता है आखिर क्यों फिल्म का ये बेहद भावुक गीत। जी हाँ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। चलिए सुनते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।

0: अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। भाई, पुराने गीतों की मिठास सुरों में नहीं बल्कि लफ्जों में, गीत में और दिल छू लेने वाले अंदाज में बसती है। साथ ही जब रफी साहब की आवाज हो तो कोई भी गीत हो वो एक रंग में ढल कर अपने दिल तक पहुंच ही जाता है। तो चलिए गंगा जमुना फिल्म से सुनते हैं रफी साहब की आवाज में ये चुलबुला गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए

0: आकाशवाणी समाचार अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई थी। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में कल रात पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 2। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of engagement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRIC countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and

सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, उगते सूरज की पहली किरण, और जब ऐसे खूबसूरत पल साथ हों तो ये दिन अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, ये सुदास की आवाज में, आयास फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

भोर सुहानी सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है जहां कुछ लोग राहों में मिलते हैं और कुछ याद बनकर साथ चल पड़ते हैं, और ऐसे में कई बार वो हमारे साथी भी बन जाते हैं और कई बार दर्द भी दे जाते हैं। और ऐसे समय में गीत हमारे साथी होते हैं जो हमारे सफर को खूबसूरत भी बनाते हैं और तसल्ली भी देते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।